मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 978 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं। पहले हिंदी में समाचार और 6 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना।

0: श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।
1: गोपाला, माखन चोरी की लीला करते हुए, मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: इस संसार में संसारिक जीव को आध्यात्मिक की तरफ जोड़ने के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए हमारे गुरुओं ने, उस परम पिता परमात्मा ने एक नाम रखा, सत्संग। सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग क्या है? इससे क्या लाभ है? सत और संग, ये दो शब्द हैं। सत का मतलब है सच, सच्चाई, और संग का मतलब है साथ। सच्चाई का साथ करना, सच्चाई पर चलना ही सत्संग कहलाता है। गुरु महाराज की वाणी में लिखा है, सत्संग सोई जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। परमात्मा के नाम का प्रचार किया जाता है और वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया जाता है, ताकि इंसान इसको सुने और इस पर विचार करे और अमल करे, और सत्संग में बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन सुखी बनाए और मोक्ष की प्राप्ति करे, जन्म मरण से छुटकारा पा सके। तुलसीदास ने लिखा है, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये धन दौलत, पुत्र स्त्री, ये सभी के पास होते हैं, चाहे कोई पापी है

0: और संतों का समागम सत्संग किसी को ही प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में सत्संग लिखा होता है उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि सत्संग की हाजिरी जरूर भरनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को सब कुछ पता है, इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना, और बार बार सत्संग सुनने का क्या फायदा है। परंतु सत्संग जहाँ भी मिले उसी सत्संग में हाजिरी इंसान को भरनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि इंसान ऐसा है, इस संसार में ऐसा फंसा हुआ है कि उसके पास समय नहीं है ईश्वर को याद करने के लिए। अपने काम धंधों में फंसा है, कार विहार में फंसा है, अपने परिवार में फंसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा है। अगर इंसान इन सभी को छोड़कर पीछे हटाकर अगर सत्संग में आएगा तो उतना देर तक उसका मन जरूर सत्संग से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कहाँ भी है। परंतु जिस समय वो सत्संग में आएगा उस समय उसका मन तो जरूर उस ईश्वर को याद करेगा। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो, जिस भी गुरु महाराज के प्रवचन हो, अच्छी संगत मिले, उसी के पास जाकर आप सत्संग सुना करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। आध्यात्म की तरफ यह सबसे पहली पौड़ी है। इस पौड़ी पर चढ़ो तो आप साक्षात उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। विषय था सत्संग। वाचक स्वर था बाबा ब्रह्मदास का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही समय बाद 7:10 पर कार्यक्रम होगा खेतीहर वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा कीटनाशक छिड़कते समय सावधानियां। दोपहर 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान, जिसमें आज उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र विषय पर जानकारी दी जाएगी। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7, जिसमें आज जहर छोड़ो जैविक अपनाओ विषय पर जानकारी करने विषय रहेंगे बाल विवाह अभिशाप, बरसात के पानी का सदुपयोग, उपलब्ध हुए तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्रामीण श्रोताओं को दी जाएगी। मार्स गान आप सुना करते हैं 7:20 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भाग संख्या 294, मुख्य स्वर श्रीकांत परगांवकर और सुरेश वाडकर का होगा। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल हमारे केंद्र से होता है 9:10 पर। इस कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे अनिल कुमार। 7:30 पर सुप्रभात। 9:30 पर आप सुनेंगे चंद युगल फिल्मी गीत। प्रोग्राम फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 10। कार्यक्रम

फिल्म संगीत होगा दिन में 11 बजे, दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। चंदौर फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं दोपहर बाद 2:30 बजे। फिल्मी भक्ति संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। रात 8 बजे प्रोग्राम होगा एक ही फिल्म से। चंद गजलों का लुत्फ आप लीजिएगा रात 9:15 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में। झोंक माहिती प्रोग्राम सराय की होगा संध्या 6:05 पर।

युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5 बजे, जिसमें आज सभ्यता स्थल कालीबंगा के बारे में जानकारी, जीवन में अध्यात्म का महत्व, आओ जाने बीकानेर को, घग्गर नदी का महत्व और टुडे हिस्ट्री विषय पर युवा श्रोता सुनेंगे जानकारी। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा बच्चों पर रखें विश्वास, हस्तकला की उपयोगिता, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, टिफिन में कुछ नया, कुछ हेल्दी और जानकारी की बहुत सी बातें बहनें अपने इस कार्यक्रम में सुन पाएंगी। सुगम संगीत में आप 8:45 पर कुछ भजन और दोपहर 12:30 पर चंद गजलें हमारे केंद्र से सुन पाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों में रात 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 kHz पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब पहले संस्कृत में समाचार, उसके बाद ठीक 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। समाचारों की चंद पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी

0: संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry,

0: and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Gujarat Anti-Terrorist Squad has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum Dehradun and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Ronald Lesquer co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence City yesterday. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती नवस्थे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जानकारी, कीटनाशकों के उपयोग में सावधानियां।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, फसल की चोखी उपज लेने खातर बुआई, बीज की किस्म, सिंचाई, चोखी भूमि गैसा गैसा गए फसल को कीट और रोग शू मुक्त होना बहुत जरूरी। फसल की चोखी पैदावार लेवन खातर अपा बुआई शू पहला बीज को उपचार करा और बिंग बाद में बीजांत करा और जमीन ने भी रासायनिक गोबर कंपोस्ट या और उर्वरक शू उपचारित कर गए ही अपा बीजांत करा हाँ जके शू भूमि और बी पर बीजांत खरीदने वाली फसल कीट रोग शू मुक्त रहे। अगर फसल गए फिर भी कीट रोग को प्रकोप हो जाए तो अपा कीट रोग ने कम करने खातर फसल गए मा कीटनाशकों को छिड़काव करा। ए रसायन कीटनाशी भी कीट और रोग ने खत्म कर दे और फसल जकी है बिंगी चोखी पैदावार लेवन खातर अपनी मदद करे। पर आंगो इस्तेमाल जको है वो करते टाइम सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मिनक खतर परेशानी खड़ी कर दे और कई बार जानलेवा भी हो जाए। किसान भाइयों, कीटनाशकों को छिड़काव करते टाइम या घोल बनाते टाइम जबकि सावधानियां रखनी है बांगी बात करा तो एक तो घोल ने कभी भी बंद कमरे में नहीं बनाना चाहिए। हर घोल की जबकि सांद्रता है वह कम या ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। बंद कमरे के अंदर अगर आप कोई भी घोल बनावा या कोई भी रसायन ने घोला तो भी रसायन शू या घोल शू जकी गैस निकले वह भी कमरे के अंदर फैल जाए और वह कई बार मिनक खतर खराब करे। इन अलावा जकी सांद्रता की बात है तो जकी भी निर्धारित सांद्रता है बिंग मुताबिक ही अपन घोल जको है वो बनाना चाहिए। किसान भाई घर में जका बरती जाने वाला

रसायन छिड़काव करते टाइम या घोल बनाते टाइम काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बंद आप कई बार किए बाद में बरता तो बे रसायन या घोल जो है बे अपने स्वास्थ्य के ऊपर बुरो असर डाल सके। बात करा अपन रसायन ने खोलन की, तो रसायन की बोतल है या कीटनाशक बोतल है बिंगो ढक अपन कभी भी मुंह छू नहीं खोलना चाहिए, ढक्कन ने सावधानी के साथ खोलना चाहिए। और कई बार किए कि अपन रसायन को या कीटनाशक को जो परीक्षण है वो चाख गए या सूंघ गए करने की कोशिश करा तो वो अपने कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर खातर घातक सिद्ध हो सके। इनके साथ के साथ किसान भाइयों एक चीज अब भी है भी कई बार किए कि अपन घर के अंदर की कुर्सी या चमचियों जो है बिन ले गए और घोलने किए कि मिलान खातर या हिलान खातर काम में लेवा तो बिंगी बजाय अपन कोई भी लकड़ी को एक डंडो ले गए और बीच अपन भी घोलने मिलानो या हिलानो चाहिए और भी डंडे ने बाद में नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों एक बात अभी है कि कीटनाशक गज का खाली डब्बा है बांगो अपन और कोई काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीटनाशक गज का खाली डब्बा है बन अपन जमीन में दरड़ो खोद गए और नष्ट कर देना चाहिए। और छिड़काव करते टाइम सुरक्षित जगह कपड़ा है वे पहनना चाहिए और हाथ के मत दस्ताना।

0: भी गोल ने मिलानो या हिलानो चाहिए और भी डंडे ने बाद में नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों एक बात अभी है कि कीटनाशक गज का खाली डब्बा है बांगो अपन और कोई काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीटनाशक गज का खाली डब्बा है बन अपन जमीन में दरड़ो खोद गए और नष्ट कर देना चाहिए। और छिड़काव करते टाइम सुरक्षित जगह कपड़ा है वे पहनना चाहिए और हाथ के मत दस्ताना पहन लेना चाहिए और मास्क भी अपन मुंह पर लगा लेना चाहिए। सामू अगर हवा आती हुए तो बीका नहीं अपन छिड़काव कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बी शुकी है कि जब आप रसायन को छिड़काव करा तो वो अपने गाभा पर या शरीर पर आगे की पड़े। बीमार आदमी और टाबरा ने छिड़काव नहीं करना चाहिए। एक चीज आ भी है भी कई बार किए अपने खेत के मां पानी की डिग्गी या तालाब बनाए हुए पीण के पानी खातर और जका खड़ा हुआ है बिंगा नकांगा ऊपर आप कई बार रसायन या कीटनाशक को जो है वो प्रयोग करा तो बिना किए कि अपन दूर ले जाके करना चाहिए क्योंकि कई बार वो ही पानी जो है वो मिनख भी पी लिया अगर तिसला गिड़ी हुआ तो और डंगर पशु भी पी लिया तो बा खतर किए कि वो जो है वो खतरनाक हो सके। यही खातर अपन है पीण के पानी से दूर रसायन को प्रयोग करना चाहिए। इनके सागे सागे किसान भाई एक चीज आ भी है कि जब छिड़काव करे बी टाइम अपन कोई भी खानो पीनो या नशो पत्तो जो है वो नहीं करना चाहिए। बी से परहेज करना चाहिए और बिया भी अपन तो नशे पत्तों तो परहेज ही करना चाहिए। और अगर कोई भी दुर्घटना घटित हो जाए किसान भाई के सागे किंग सागे तो बिंग सागाला जगह है वे बने तुरंत डॉक्टर जी कने ले गए और जानो चाहिए। और छिड़काव करते टाइम या बाद में नींबू का सेवन जो है वो जरूर कर लेना चाहिए। इनके सागे सागे किसान भाई एक चीज अभी है कि घोल जो बनावा नहीं वो बितो ही बनाना चाहिए जितना को भी दिन छिड़काव संभव हो सके। अगर किए कि आप ऊपर थली बना लिया तो वो बाद में किए कि बाद में अगले दिन काम में लेना पड़े और कई बार किए भी कीटनाशक को असर भी कम हो जाए। अब बात करा आप रासायनिक दवाइयां ने या कीटनाशक जगह है बाने खरीदते टाइम भी अपन कई सावधानी रखनी चाहिए। खरीदते टाइम एक तो अपन देखनी बहुत जरूरी है भी जकी भी बोतल या कंटेनर या जरीकन है बिंग ऊपर रजिस्ट्रेशन को लेबल लागे डोनो चाहिए। और कीटनाशक या रसायन अपन बी दुकान में खरीदना चाहिए जगह कने बिना बेचने को लाइसेंस कृषि विभाग की तरफ मिले डो है। और कई बार की है कि आप आ देखा भी कि जकी कीटनाशी दवाइयां बैन करेड़ी है वे दवाइयां कई लोग की है कि बेचते हैं तो अपन है अपने कृषि विभाग के वैज्ञानिकां से सलाह लेकर बंगी सिफारिशों के हिसाब से ही अपन है कीटनाशी दवाई जकी है खरीदनी चाहिए क्योंकि कई बार की है कई बैन करेड़ी जकी दवाइयां हैं वे की है कि अपने फसल के ऊपर खराब असर गाल दे और बीचों कई बार तो की पूरी पूरी फसल ही नष्ट हो जाए तो बी चीजों अपन बचारो रखना बहुत जरूरी है। बिल है वो भी जरूर लेना चाहिए क्योंकि बी शुकी है कि आप बाद में कोई भी दावो भी कर सका। आ सारी चीजों को अपन ध्यान रख के ही कीटनाशक खरीदना चाहिए और कीटनाशक को छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों आज खातर इतो ही अब हूं चलूं राम राम।
1: कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्राम श्रोता ये जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं मुखराम की आवाज में ये लोक भजन।

अभी अपने मुखराम परिहार की आवाज में ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 294, मुख्य स्वर श्रीकांत प्रगांवकर और सुरेश वाडकर का।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आपने मानस गान सुना। मुख्य सर था श्रीकांत प्रगांवकर और सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। आज बात करेंगे हम क्षमा यानी माफी पर। श्रोताओं, क्षमा आपके लिए है, भले दूसरा व्यक्ति उसे मांगे या ना मांगे, वो अपनी भूल स्वीकारे या ना स्वीकारे। यह आपकी स्वास्थ्य कुशलता और आने वाले जीवन के लिए है। जो लोग क्षमा को छोड़ बदले की भावना रखते हैं, उनमें हृदय गति का बढ़ जाना, उच्च रक्तचाप हो जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। गौर करने योग्य बात यह है कि जिन लोगों ने माफ किया वे कम उदास और कम चिंतित रहे, वे अच्छी नींद सोते हैं, आवेश और बदले की भावना से वे सदैव मुक्त रहते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी रचना हम स्वयं करते हैं, संसार हमारा आईना है। अपनी गलती स्वीकार कर लेना भी एक कला है। हमें इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए कि माफी हमारे भले के लिए है। चोट को दिल में रखना और किसी से ज्यादा अपने आप को तकलीफ पहुंचाना है, यह आपको अपने से वर्तमान को पूरी तरह से जीने से रोकता है, जिसे आप शांति से कल की नकारात्मक यादों को भूलकर जी सकते हैं।
1: तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

जीने की राह फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। श्रोताओं, बात करते हैं संगीत और स्वास्थ्य पर। संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ये सीधी दवा है यानी मेडिसन है। डॉक्टर भी अब इसे म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। संगीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। शोध से पता चला है कि संगीत किसी की भावनाओं को संसाधित करने में मदद करता है। चाहे हमें किसी तरह का दुख हो या कोई चिंता हो, संगीत उसमें एक दवा यानी मेडिसिन की तरह काम करता है। संगीत से सेहत में जो फायदे होते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये तनाव कम करता है, धीमा राग या भजन सुनने से स्ट्रेस हार्मोन घटता है जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। सोने से पहले अगर 10 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुन लिया जाए तो अच्छी नींद आती है। अगर किसी की कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, अगर उन्हें संगीत सुनाया जाए तो अपने दर्द को वो कम महसूस करते हैं। खुश होकर गाना गाने से शरीर में फील गुड यानी हार्मोन डोपामिन बढ़ता है जिससे बीमारियां कम होती हैं। बच्चों को संगीत सिखाने से याददाश्त और फोकस बेहतर होता है। बुजुर्गों में अल्जाइमर का रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों, संगीत सुनिए। संगीत के अलग अलग रूप हैं। शास्त्रीय संगीत है, रॉक संगीत ऊर्जावान है। सभी उम्र के लोग संगीत का आनंद ले सकते हैं। इसे एक सार्वभौमिक भाषा माना जाता है।

श्रोताओ, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इस पर पूर्ण विचार कर कर ही बोलना चाहिए। एक बार कही गई बात धनुष से निकले बाण की तरह होती है, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। आपके द्वारा किए गए काम और बोली गई बात का परिणाम आपको ही भोगना पड़ता है। मधुर शहर से बोलो उत्तम हो व्यवहार, वह प्राणी बिन युद्ध ही जीते ये संसार। मंगलमय जीवन बने पूरे सभी हो काज, ऐसी वाणी बोलिए सुंदर बने समाज। कहने से पहले सदा करना सभी विचार, मुख से निकली बात पर होता ना अधिकार। जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, वाणी मीठी बोलिए सबको अपना जान। श्रोताओ, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। यानी ऐसे वाणी बोलिए ही मत जिससे हमें नुकसान हो। हमारा व्यक्तित्व हमारी वाणी का परिचय है। हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे भाव, हमारी सोच का आंकलन हमारी वाणी से ही तो होता है। व्यक्ति द्वारा बोले गए मधुर कोमल शब्द यहां मित्रता का विस्तार करते हैं, वहीं कठोर शब्द

शत्रु भाव बढ़ा देते हैं। हमारे शब्दों में किसी का दुख कम करने की, किसी की थकान मिटाने की और किसी के हौसलों को बढ़ाने की शक्ति है। ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हूं शीतल होए।

जमीर फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत साहिर का और संगीत सपन चक्रवर्ती का। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था होती है। हमारे बहुत से रीति रिवाजों का आधार गहरा और विस्तृत है। हर रिवाज अपने साथ गहरे मतलब लिए हुए हैं। गीत

गीत हो या पूजा अर्चना, जो भी रीतियां हमारे बुजुर्गों ने बनाई है वो सालों सालों से चली आ रही हैं। हर चीज के बड़े गहरे मायने हैं और अधिकतर इनके वैज्ञानिक आधार भी हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करने से हम सम्मान तो देते ही हैं, साथ में एक्यूप्रेशर भी इससे हो जाता है। पैरों की हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनना, कांचे दबाना, इससे भी नसों पर असर होता है। तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना, जिससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भोजन में मसाले पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। प्रकृति की आराधना करना, पेड़ पौधे, पंछियों, नदियों, पहाड़ों, सभी को भगवान मानकर उनकी पूजा करने से हम प्रकृति की सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। हमारे तीज त्योहारों से मेल मिलाप बढ़ता है और हम नई चीजें सीखते हैं। लोग गिले शिकवे मिटाकर इकट्ठे होकर एक साथ इन त्योहारों को मनाते हैं।

सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुप्रभात कार्यक्रम, आप हर रोज 7:30 पर प्रातः सुना करते हैं। श्रोताओ, हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, चाहतों को पूरा करने का, कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का।

मनाडे की आवाज, साथ दिया है महेंद्र कपूर ने, फिल्म का नाम शोर, गीत वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुनते रहिए ये गीत, कार्यक्रम से अपने मित्र हरप्रीत को अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब पहले समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को

0: सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र

0: पत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान

हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्य ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है, बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है, हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है, घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन, जनसत्ता की

0: और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat Anti-Terrorist Squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission.

0: clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terror squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोज़ा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी ज़िलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोज़गार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से MSMEs, पैकेजिंग, कपड़े की सनतों, आटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फ़रोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी ज़िला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज

0: OSAT से एक खुद कफील टेक्नोलॉजी इको निज़ाम की जानिब भारत के सफ़र में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मस्नूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेज़ी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज़्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फ़ायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनिनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़रात की वजारत और मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के 2 बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा

0: की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
1: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजेंद्र जैन को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेंद्र जैन को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने के हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुनेंगे के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित

0: जाएगा जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
1: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा जिसे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था जो अब पूरा होने जा रहा है।
2: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी उसका वही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
0: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
3: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां 2 दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
4: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। 2 दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा

0: समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बैरागनाथ को।

मरुमंगल कार्यक्रम में आप बैरागनाथ को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कुछ युगल फिल्मी गीत।

0: I'll teach you something else.
1: सिखाओ जी.
0: Singing
2: पूर्व और पश्चिम फिल्म में आप महेंद्र कपूर और आशा को सुन रहे हैं.

0: ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
1: फिल्म का नाम पति पत्नी, और वो आवाजें महेंद्र कपूर और सुषमा श्रेष्ठ की।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

श्रोताओं, ये युगल फिल्म गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलजार का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम पलकों की छांव में, आवाजें वंदना शास्त्री और किशोर कुमार की।

प्रोग्राम के अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आर डी वर्मन की आवाज़ें, फिल्म का नाम शान, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी वर्मन का।

0: सब गोलमाल है।
1: कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, फिल्म का नाम शूरवीर, गीत SHV हरि का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप कुछ युगल फिल्में की सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए फिल्म संगीत। पहले सुनते हैं शक्ति फिल्म में लता को।

प्रोग्राम की अगली पेशकश मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता ने, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़, DRM 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम प्रतिज्ञा।

यादों की बारात। लीजिए इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा को सुनिए, गीत मजरूह का, संगीता डी वर्मन का।

प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम बॉबी, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। आइए सुनते हैं एक दो गाना बॉबी फिल्म से।

0: जमाने को दिखाना है। लीजिए इस फिल्म में आरडी वर्मन को सुनिए।
1: शेरे फरहा ही रांझा

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का।

0: लीजिए अब सुनते हैं आशा भोसले के साथ उदित नारायण को। गीतकार समीर हैं, संगीतकार जतिन ललित, और फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की थी, गीत मजरूह का था और संगीत आनंद मिलिंद का। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये नगमा। गीत मदन पाल का है, संगीत जतिन ललित का, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

लीजिए, अब सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है चलते चलते। गीतकार आदेश श्रीवास्तव हैं और संगीतकार जावेद अख्तर।

कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मिस्टर आशिक। गीत के बोल इंदिवर के थे, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म इम्तिहान का ये नगमा। आवाज़ें कुमार सानू और बेला की है, गीत फैज़ अनवर का है और संगीत अनु मलिक का।

हरिहरन के साथ चित्रा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जिद्दी। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी दिलीप सन्ने ने। लीजिए अब सुनते हैं हरिहरन के साथ साधना सरगम को। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1 बजे का। 1:05 पर आप बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुतकर्ता होंगी रजनी मोदी। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर और उर्दू सर्विस के लिए समय रहेगा दोपहर 3 बजे का।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। सिराइकी के लिए समय रहेगा 6:05 का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा चौपाल का। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे।

स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। सुगम संगीत में कुछ गज़लों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 और अंग्रेज़ी में समाचार का समय रहेगा 11:05 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है यस बॉस। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत जतिन ललित का। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस गुहानकर, निर्मला, विशाल गुहानकर। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफसल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, गुरु मीना, इरफान मीना, काफिस मीना। सूरतगढ़ राजस्थान से इसी गीत को सुनना चाहा है भूपेंद्र मिशन ने, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, चंसोलिया आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म डुप्लीकेट का ये नगमा। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश। परमवीर हाउस, आदर्श नगर, बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। कवाई सालपुरा, जिला बारा से राज सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लूबना और यश मंसूरी। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। शेरवानी स्कूल गंज ढूंढवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये नगमा। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया ने। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश ने। चक 15 PSS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह, आदर्श पाल, रोबिन सिंह, टेलर मास्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर विचित्र सिंह। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार ने। विरम गांव गुजरात से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है अजीत भावसार ने, प्रमिला, भावेश कुमार। चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है सतीश अनेजा ने, बिमला अनेजा। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है मेजर साहब और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार।

विनोद सुथार, हिमांशु सुथार, पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सिंह, कालू मिस्त्री। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारण, किड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा ने

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है बाग बगीचों में समसामयिक कार्य।
1: भाइयों राम राम। भाइयों आपने देखा कि आजकल ठंड ज़्यादा पड़न लग रही है और इन खातर फलदार वृक्षा ने पड़ों बचाना बहुत ही जरूरी है। और जटता ही होश के पौधे में सिंचाई आपने किया गया टेमो टेम करता रहना चाहिए, जगह किया गया ठंड या पाड़ों का असर किया गया पौधा पर कम हुए। अब पाड़ों बचाव का तरीका ही बात करा तो पौधा लगाते टाइम आपने किया गया उत्तर पश्चिम दिशा में वायु अवरोधक पौधा जरूर लगाना चाहिए। सेंसिल किस्मों को अपने चुनाव करना चाहिए और नींबू प्रजाति में किन्नू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, बारामासी, स्वीट लाइन और कागजी नींबू प्रमुख हुए।

छोटा पौधा है, चारों तरफ घास फूस कीप सरकंडा आदि के इन त्रियापा ने ढक देना है कि जखों के आगे सिर्फ दक्षिण पूर्वी भाग ही खुलो रहे। इसके बाग के किनारे पर घास फूस बाढ़ के धुआं पान कर देना चाहिए और ज्यादा पाड़ो या ठंड पड़ने वाले दिन की सिंचाई अपन ने जरूर करनी चाहिए। और किसान भाइयों, किन्नू का फल तैयार हो जाने पर आगे तुड़ाई बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और किसान भाई जी का है तुड़ाई करण भी लाग रहा है और तुड़ाई के शाम के टाइम या सुबह के टाइम बिना धूप और कम तापमान का वातावरण में अपन करनी चाहिए। पर ध्यान अपन वो रखना है कि सुबह के टाइम किन्नू का फल ओसू गिला नहीं होना चाहिए और फलों की जिसकी कटाई है वह डालियों कैंची या क्लिपर के द्वारा छिलके के नजदीक ऊँ डंडी ने काट के अपन करनी चाहिए। जे डंडी लंबी रहे तो आ किसान भाइयों सघन खेती जकों के फसल को उत्पादन ज्यादा हुआ है और जैविक खादा का प्रयोग हूँ पोषक तत्व तो पौधे ने लंबे टाइम तक मिलता रहे और यह खादा आपको अवशिष्ट गुण माटी में छोड़े और इन खातर एक फसल में खाद का प्रयोग हूँ दूसरी फसल ने क्या लाभ मिले और सागे सागे माटी उर्वरकता को संतुलन भी बने हुए रहे और आगे प्रयोग हूँ बीजा का अंकुरण सही और जड़ा का विकास अच्छो हुआ और जैविक खादा उपचारित अन्न जगह हुआ और सागे सागे सब्जी फल आदि को स्वाद जो है वो रासायनिक खादा के तुलना में प्राकृतिक रूपों उत्तम हुए और पौधा में जैविक खादा का प्रयोग रोगों लड़ने की शक्ति है वह ज़्यादा हो जाए और जैविक खादा पर्यावरण की मित्र भी हुए और इनका कह के ज़्यादा उपयोग की प्रकार की हानि भी को नहीं हुए। और साथ ही साथ किसान भाइयों, कंपोस्ट खाद के उपयोग रासायनिक उर्वरक का नकारात्मक प्रभाव ने भी आप कम कर सका और इनका उपयोग माटी की उर्वरकता और उत्पादकता में साथ ही साथ वृद्धि तो हो ही हुए और जगह मूल्यांकन किया आप माटी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणा में होने वाला परिवर्तन द्वारा आप आसानियों समझ सका। बात करें किसान भाइयों बर्मी कंपोस्ट की, तो माटी की उर्वरकता और उत्पादकता ने लंबे टाइम तक बनाए रखने खातर जैविक खादा जिया गोबर की खाद कंपोस्ट हरी खाद जीवाणु खाद आदि को योगदान बहुत ही जरूरी हुआ है और अपना देश में करोड़ों टन खेती का अवशिष्ट जिया की भूसो है कड़व है पत्तियां आदि उपलब्ध हो है पर इन ज़्यादातर मात्रा में किसान भाई अवशिष्ट जैविक पदार्थ ने क्या बाढ़ देवे जबकि अवशिष्ट जैविक पदार्थ ने कैंसुआ जगह है वह उत्तम किस्म की खाद कि आप बर्मी कंपोस्ट का भी वहाँ परिवर्तित कर देवे जकों के करोड़ों टन पोषक तत्व तो अपना प्राप्त हो सके और कैंसुआ द्वारा खेती अवशिष्ट को रूपांतरण जो है वो बर्मी कल्चर के रूप में जाने जावे और आपने विश्व में कैंसुआ की लगभग 7,000 प्रजातियाँ पाई जावे जगह में केवल 40% प्रजातियां ही भारत में पाई जावे। इनमें कई प्रजातियां बर्मी कल्चर खातर किए गए प्रयुक्त करी जावे जिया की एपीजी कैंसुआ प्रजाति जिकी है वह अपने देश में सारू उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों बर्मी कंपोस्ट के पोषक तत्व और गोबर की खाद या जगह पोषक तत्व की अगर तुलनात्मक बात करा तो नत्रजन जगह है वह बर्मी कंपोस्ट में 2-3%, गोबर की खाद में 0.5-0.93%, फास्फोरस की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.4-0.8%, पोटेशियम की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.8-1.2%, और पीएच मान की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 7-7.5 और गोबर की खाद में 7.2-7.9 पीएच मान जो है बोरे हुए। अब बर्मी कंपोस्ट का लाभ की बात करें तो गोबर की खाद की तुलना में बर्मी कंपोस्ट में एंटीनोमाइसिटीज यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा कई गुना ज्यादा हुआ है जबकि वही खाद तैयार फसलों में बीमारियां प्रतिरोधी क्षमता की है वह बढ़ जावे और बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग माटी की जल शोषण धारण क्षमता में वृद्धि हुआ है जबकि क्या माटी को कटाव रुके और पौधे में क्या जल उपलब्धता पर वृद्धि हुआ है। इन खाद का उपयोग जल वाष्पीकरण में कमी हुआ है और इन खातर फसलों में कम सिंचाई की जरूरत पड़े और सागे ही सगे खेता में ह्यूमस वृद्धि के कारण बरसात की बूंदा को आगाज सहन की क्षमता साधारण माटी की तुलना में कई गुना हो जावे और माटी को क्षरण भी कम हुए। बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बुंटे में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हुए और सागे सागे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़े जबकि माटी में रहने वाला सूक्ष्म जीवाणुओं खातर लाभदायक हुए और बने सक्रिय बनावे। बर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट तैयार करने खातर छायादार स्थान की अपने जरूरत पड़ेगी जटे पानी को भराव नहीं होना चाहिए और शेड होना चाहिए और पानी का स्रोत जगह है वह नेड़े ही हुए जखों के अपने पानी देने में आसानी रहे। छायादार जगह को आकार उपलब्ध कार्बनिक ठोस अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करे और इन छायादार स्थान में एक ऊँ ज़्यादा क्यारियाँ आप बढ़ा सका। गोबर की खाद की उपलब्धता अनुसार क्यारियाँ आप निश्चित करनी चाहिए। आंगी लंबाई अवशिष्ट की मात्रा अनुसार आप रखनी चाहिए चौड़ाई लगभग 3 फीट निस्तो के अवशिष्ट पलटन

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: अभ्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजराबू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
1: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे, और काफी श्री गंगानगर है, जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करे, किस तरह से वहां पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रही।
0: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, प्रभावी और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। यूपीए अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,477 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7,104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को रेडियो सखी रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, गर्मी बहुत पड़ रही है और उस गर्मी में भी उमस भरी गर्मी, बहुत पसीने आ रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप ऐसी चिलचिलाती धूप में भी घर के अंदर प्राकृतिक वातावरण में बहुत अच्छे से रह रही होंगी, होना भी चाहिए। ठंडाई वंडाई पीते रहिए और जो गर्मी से लू से बचने के जो उपाय है उसको करते रहिए, ताकि हमारे प्यारे श्रोता इसी तरह से अपने प्यार का आदान प्रदान हमसे करते रहें। चलिए फिर से उसी दौर में चलते हैं जहां बहुत सारी जानकारियों के साथ गीत संगीत का भी कार्यक्रम होगा और आनंद लेंगे इस एक घंटे के कार्यक्रम का आप और हम मिलकर। पहले बात करते हैं बच्चों की। बहनों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनका बचपन बड़ा मासूमियत भरा होता है। कई बार भोलेपन में ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि हमें उत्तर देना नहीं बनता, लेकिन ये मासूम होते हैं। इन्हें उसी मासूमियत से जब हम जवाब दे देते हैं ना, तो ये संतुष्ट भी उतना ही जल्दी हो जाते हैं। अपने बच्चों पर भरोसा रखें और खुद पर भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबसे पहले खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम खुद आश्वस्त हैं, तभी हम सामने वाले की क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर उसका जो भरोसा कर पाएंगे। जितना आप बच्चे पर भरोसा करेंगी, उतना ही वो दृढ़ विश्वासी होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका विश्वास है। बच्चे अक्सर वही बनते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। बहनों, माता पिता के रूप में हमारी आवाज़ एक दिन उनकी आंतरिक आवाज़ बन जाती है। अभिभावक होने के नाते उनके पालन पोषण के तरीके, उनसे बात करते समय शब्दों के चुनाव को लेकर सावधान रहना चाहिए। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर हों, जो निर्णय लेने में सक्षम हों, अपने हक के लिए खड़े हो सकें, आत्मविश्वास से भरे हों, खुशहाल जीवन जिएं। मैंने बच्चों को खुशहाल जीवन देने के लिए बच्चों को गलतियों के सुधार के बारे में बताएं, ना कि बात बात पर डांटें। डांटना भी ज़रूरी है, उनके अच्छे बुरे का भला हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, लेकिन प्यार से समझाएं। डांटने की भी आवश्यकता है तो डांट भी आपकी प्यार भरी होनी चाहिए। उन्हें अच्छे और बुरे के बारे में बताएं, ताकि बड़ा होकर एक सफल इंसान पाएं। बहनों, वो सफल इंसान भी बन जाएगा, हमारे भविष्य को सुदृढ़ भी करेगा, हमारा नाम भी रोशन करेगा, लेकिन जो उसके अनजाने मासूमियत भरे बचपन में जो आनंद है, वो बड़े होकर शायद ना मिले।

मीरा शाम सलोना का नहा खोया था कहाँ, देखा मैंने कैसे थोड़ा सा आंखों से ओझल नहीं हुए कि हमें फिक्र होने लगती है बच्चों की। और जब बड़े होकर उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं तो हम बड़ा दिल पे पत्थर रख के उनको भेजते हैं, पता नहीं कैसे खाएगा, कितना खाएगा और कब खाएगा, खाएगा भी कि नहीं, पढ़ाई कैसी करेगा, जिस उद्देश्य के लिए हम भेज रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा। 100 क्वेश्चंस, 100 सवाल हमारे मन में होते हैं, लेकिन बहनों भरोसा तो करना पड़ता है। बच्चों पर विश्वास रखना एक

मजबूत रिश्ते की नींव होती है बहनों। उन्हें थोड़ा स्वतंत्र छोड़ें, ज़्यादा रोक टोक ना करें। इससे सीखते हैं कि बच्चों को भी लगता है कि वो भरोसे के लायक हैं। आप जब बच्चों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है बहनों। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। जब आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो शुरू शुरू में आप साइकिल पकड़ते हैं, कभी बच्चे को संभालते हैं ताकि वो गिरे नहीं और अच्छे से हैंडल कर पाए। लेकिन हमेशा यदि आप पकड़ के रखेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नहीं ना। आपको एक दिन उसका हाथ छोड़कर उसे खुद को चलाने देना होगा साइकिल। बस उसी दिन वह संतुलन बनाना भी सीख जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है बहनों। हम सोचें कि हमारे बिना बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, हमारा फर्ज है उसे सिखाना और अच्छा सिखाना, लेकिन उसे देखना भी तो होगा कि जो हमने सिखाया है वो कैसा कर रहा है। बच्चों

साइकिल पकड़ते हैं, कभी बच्चे को संभालते हैं ताकि वो गिरे नहीं और अच्छे से हैंडल कर पाए। लेकिन हमेशा यदि आप पकड़ के रखेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नहीं ना, आपको एक दिन उसका हाथ छोड़कर उसे खुद को चलाने देना होगा साइकिल। बस उसी दिन वह संतुलन बनाना भी सीख जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है बहनों। हम सोचें कि हमारे बिना बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, हमारा फर्ज है उसे सिखाना और अच्छा सिखाना, लेकिन उसे देखना भी तो होगा कि जो हमने सिखाया है वो कैसा कर रहा है। बच्चों पर संदेह बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से वे हमसे दूर हो जाते हैं बहनों। बल्कि ऐसा माहौल बनाएं कि वे आपसे हर बात बिना डर के बता सकें, एक दोस्ताना व्यवहार रखें। बहनों, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसके विकास के दौरान धैर्य रखें। बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपने उसकी बढ़ती उम्र का ध्यान रखते हुए उसको संतुष्ट करना है कि बेटा क्या कैसे कब होता है, और उनकी क्षमताओं पर भरोसा रखें। जब कुछ अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करें ताकि और अधिक उत्साहित होकर अच्छे व बुरे का अंतर जान सके। आखिर हमारा भविष्य है ये बच्चे। ये काफी हद तक माँ बाप पर भी निर्भर करता है कि भविष्य कैसा चाहिए अपना। समय बच्चों को दें, उन्हें घुमाने ले जाएं, प्रकृति के बारे में बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, अच्छी अच्छी बातें उनसे शेयर करें, गाड़ी में बैठाकर दूर सफर पे लेके जाएं। सफर का आनंद तो लें, लेकिन साथ ही बातों बातों में ट्रैफिक के नियमों की चर्चा भी करें। तो चलें गाड़ी लेकर,

क्यों बहनों, आनंद आया इस सफर का? जब बच्चे और परिवार जब साथ होता है ना बहनों, तो आनंद अपने आप दुगना हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पुरानी यादों को लेकर। बहनों, क्या आपको याद है स्कूल में जब SUPW के पीरियड में क्रोशिए से रुमाल बनाते थे? थालपोश, पायदान और कुछ मिट्टी से कलाकृतियां, कुछ याद आया? मैंने बड़ी ही शानदार यादें हैं ये। जब कोई चीज़ बनाकर घर वालों को देते थे ना, मान लो कोई रुमाल बना लिया क्लास में बैठकर, तो जब वो घर पे लाते थे कंप्लीट करके, तो मम्मी पापा को एक बड़ी खुशी होती थी, वाओ क्या शानदार आइटम बनाई है, थालपोश बना दिया। तो मम्मी के सामान को ढकने के लिए वो काम आता, तो मम्मी के जो प्रतिक्रिया होती थी वो एक अलग तरह की होती थी, अंदर से जो खुशी होती थी वो देखते बनती थी। कोई छोटा सा पर्स बना लिया, किसी परिवार के मेंबर को दे दिया, तो उसकी जो खुशी सामने चेहरे पे दिखती थी ना, उसका जो फीलिंग होती थी वो एक अलग तरह की थी। आनंद की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब समय कहाँ है किसी के पास। आज अगर किसी को कुछ बनाकर दे भी दे तो ना, वो खुशी दिखाई नहीं देती जो उस वक्त दिखती थी। हस्तनिर्मित चीज़ों को बनाने वाले की मेहनत दिखाई देती थी बहनों। हमने किसी फ्रेंड को रुमाल दे दिया बनाकर, या कोई और सामान जब हाथ से बनाकर देते थे ना, तो वो सामने वाला खुश होता था, उसको लगता था कि ये स्पेशल है उसके लिए। उपहार लेने वाले को उसकी उपयोगिता पता होती थी कि कितनी मेहनत से समय निकाल कर बनाए गए हैं ये तोहफा। पहले के समय में ये आधुनिक बेडवेड नहीं हुआ करते थे, केवल चार पाइयाँ होती थी जो हाथ से काते गए सूत से बनती थी, जिस पर लेटने पर एक सुख का एहसास होता था। चारपाई पर सूती दरी बिछाई जाती थी। पहले लोग घर पर ही चरखे से सूत काटते थे, रंगते थे, फिर दरी बनाते, चारपाइयाँ बनते। धीरे धीरे समय बदला और हस्तकला की उपयोगिता में बदलाव आने लगा। लेकिन फिर भी बहनों, कहीं ना कहीं दुआ है कि जितनी भी ये बची है परंपरा, वो जिंदा रहे।

ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। बिल्कुल बहनों, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे, यही दुआ है। बहनों, हम बात कर रहे थे हस्तकला की उपयोगिता की। हस्तकला का माध्यम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये देखा और महसूस किया गया है कि मनोदशा को बेहतर बना सकती है, ये आत्मविश्वास बढ़ा देती है और कहीं ना कहीं तनाव को भी कम करती है। शिल्पकारी को प्राकृतिक अवसाद रोधी भी माना गया है बहनों। कई विकारों से छुटकारा जो मिल जाता है, ध्यान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो कारण ये है, ध्यान क्या है कि जब हम कोई चित्रकारी, शिल्पकारी, किसी तरह का भी कोई काम हथकरघे का करते हैं ना, तो हमारा ध्यान रहता है उसके डिज़ाइन पे, वो कैसा बन रहा है, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, या और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हमें ध्यान केंद्रित करके उसको पूर्ण रूप देना होता है। शिल्पकारी में लीन होने पर व्यक्ति वर्तमान क्षण पर ध्यान देने लगता है, क्या बन रहा है, कैसे बनाना है और क्या इसमें सुंदर बनाया जा सकता है। हमारा ध्यान केवल वहीं केंद्रित हो जाता है और उन क्षणों में समय जो है वो ठहर जाता है। आप रोज़मर्रा की तनावों से हटकर एक नए अलग जो अनुभव है उसमें आप लीन हो जाते हो। शिल्पकला से डोपामाइन नाम न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन बढ़ता है जो सुख और आनंद का कारण बनता है बहनों। ये भी एक दिमाग की उपज है। हमारे अंदर एक ऐसा एसेंस पैदा होता है जिससे सुख की अनुभूति होती है। कोई भी काम जब हम दिल से करते हैं ना बहनों, तो जब वो अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, तो वो कंसर्न होता है हमारे दिमाग से। और जब सुख जो अनुभव हम करते हैं ना, उसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि हमारे अंदर डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन हो रहा होता है। बुनाई, सिलाई, रंगाई, पेंटिंग, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, कार्ड बनाना, घरेलू उत्पाद बनाना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। यह कम पैसों से शुरू होने वाला बेहतरीन काम है बहनों। स्थानीय कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाता है, हमारी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने में मददगार है। पुरानी चीज़ों से नई आइटम तैयार करके पर्यावरण संरक्षण में भी मदद होती है।

बहनों, आजकल जो समय है वो ऐसा आ गया कि कब चलते फिरते ठगी का शिकार हो जाएं आपको खुद को भी पता नहीं चलता। आए दिन खबरें सुनते हैं कि फलां व्यक्ति का मोबाइल हैक हो गया है, मदद मांगने के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, बाजार गए थे किसी ने असली सामान दिखाकर नकली दे दिया। एक और फ्रॉड भी सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग घरों में आकर सोने चांदी के जेवर की सफाई करने को कहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि रोज अखबारों में पढ़कर टीवी व फोन पर ठगी का सुनकर भी कुछ बहनें इस ठगी का शिकार हो रही हैं। इसी तरह ऑनलाइन भी अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। और ध्यान देने योग्य जो बात है ना, वो बहनों ये है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार कौन हो रहा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसलिए जैसे समय पर जागने के लिए हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं ना, वैसे ही समय समय पर यहाँ से भी ये कोशिश हम करते हैं कि हमारे प्यारे श्रोता इस तरह की ठगी के शिकार ना हो। समय समय पर जानकारियाँ दी जाती है कि कैसे इन ठगों से बचा जा सकता है। फ़ोन हम सबके पास है, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत सारे ऐसे हमारे सामने केसेस आते हैं, देखते हैं कि अलग अलग तरीके, आज एक तरीके से बचते हैं तो अगले दिन कोई और नया तरीका अपनाकर जो ठग है वो हमसे ठगी कर देता है। लेकिन हमें सावधान होना पड़ेगा, बहुत सतर्कता से इस मोबाइल का

ये निर्भर करता है लूट कैसी है। अगर दिल का धोखा हो रहा है तो किसी को नहीं पता चलता, जब शिकार हो जाते हैं तभी पता चलता है। वैसे ऑनलाइन ठगी भी जो है ना, वो होने के बाद ही पता लगता है कि हम कहाँ किसके द्वारा धोखा खा रहे हैं, और समय कई बार हमारे पास इतना नहीं होता कि हम उसकी पर्याप्त जो सूचना है वो किसी को दे पाएं। धोखा कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, सिर्फ उपभोक्ता नहीं बहनों, आजकल तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डेटा लीक की वजह से शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन या फिर बैंकिंग पासवर्ड ना दें। ये पहली जो जानकारी है ये आपसे साझा कर रहे हैं। हर बार बताया जाता है कि ओटीपी एक विशेष हमारी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर किसी से शेयर ना करें। बैंकिंग पासवर्ड तो बिल्कुल ही ना दें। किसी भी लोक लुभावने ऑफर के झांसे में ना आए। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत

ट्रेंड है बहनों। हम लोग क्या करते हैं, कौन बाज़ार में जाए, कौन खरीदने जाए, तो ऑनलाइन ही घर पे हम ऑर्डर डालने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई भी साइट ओन करते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े ऑफ़र, एक के साथ एक फ्री, या फिर आज इतनी छूट मिल रही है, कोई दिन विशेष पे खास छूट, कोई ग्रॉसरी पे छूट। लेकिन जब ऑर्डर फाइनल कर दिया जाता है तब पता चलता है कि उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं था। इसलिए लुभावने ऑफ़र के झांसे में ना आएं, अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें। यदि आपको साइट के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसको क्लिक ना करें। यदि आपके साथ कोई धोखा हो जाए तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें, या फिर साइबर क्राइम पेट्रोल पर शिकायत दर्ज करावें। ये भी एक साइट ही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप 1930 यानी 1930 पर कॉल करके या फिर संबंधित थाने से आप संपर्क कर सकते हैं। बैंक अधिकारी, कर्मचारी या फिर पुलिस कभी भी आपसे फ़ोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। बिजली बिल बकाया, लॉटरी या फिर पार्सल डिलीवरी के नाम पर आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जिस खाते से पैसे कटे हैं तुरंत अपने बैंक को सूचित कर उसे ब्लॉक करवा दें। बहनों, ठगी ठगी में भी फ़र्क होता है। पैसों की ठगी हो तो मन परेशान और दुखी होता है, लेकिन यही ठगी दिल की हो तो दर्द भी अच्छा लगता है।

बहनों, बहुत सारी जानकारियाँ आपसे साझा की। उम्मीद करती हूँ कि कम से कम फ्रॉड से आप ज़रूर बचने का प्रयास करेंगी। वैसे तो कहते हैं ना कि शिकार जब होता है।

बहनों बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा की, उम्मीद करती हूं कि कम से कम फ्रॉड से आप ज़रूर बचने का प्रयास करेंगी। वैसे तो कहते हैं ना कि शिकार जब होते हैं ठगी का तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे तो हो सकता है कि भी किसी भी अनहोनी से हम बच पाएं। चलिए अब ले चलते हैं आपको किचन में और बनाते हैं टिफिन में कुछ नया भी और हेल्दी भी। मैंने आजकल वर्किंग वूमेन और मैन के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चे भी डेली के वही जो है पोहा, इडली, दाल के पराठे खा खा कर ऊब चुके हैं। आप भी परेशान हैं ना? वैसे तो मुझे पता है कि जितने भी श्रोता बहनें हैं, हमारी सखियां हैं, वो बड़ी एक्सपर्ट हैं, रोज़ नए नुस्खे बनाई कर ही लेती हैं कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तो हमारी आदत में शामिल हो चुका है ना कि चलिए आज ये जो सब्जी बच गई है इसका क्या करें, कुछ नया बनाते हैं, कभी कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करके, और वो इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि वाव मुँह से निकल जाता है, खाने वाला तारीफ करे बिना रहता ही नहीं है। हम भी आज कोशिश करेंगे कि कुछ, वैसे मुझे लगता है कि आप बनाती ही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के हिसाब से भी एक नया एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। आप भी गुजर रहे हैं ना इस परिस्थिति से, तो आज बनाते हैं टिफिन में कुछ नया। बहनों गेहूं की रोटी जो है ना अक्सर हम सिंपल बनाते हैं और कई लोग उसमें बेसन भी डालते हैं, लेकिन जो पनीर भुर्जी, कई बार हम लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं, पनीर भुर्जी और पालक यदि कटी हुई उसमें डाल दें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा दही के साथ या फिर मक्खन के साथ खाएं तो बहुत स्वाद लगता है। पालक को बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लें, थोड़ा सा बेसन, गेहूं के आटा और प्याज या कुछ और डाल के उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच घी यदि आटे में मिला लिया जाए तो बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होता है, और उसके परांठे खाएं तो मज़ेदार। इडली का बैटर जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, चुकंदर का रस उसमें मिला लें तो सोने पर सुहागा, इससे इडली का रंग तो पिंक हो ही जाएगा, साथ ही

हेल्दी भी हमारी सेहत के लिए होता है। बहनों, ब्राउन ब्रेड, अक्सर हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में कोई बुराई नहीं है वैसे तो, लेकिन यदि खाना ही चाहें तो कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड, आटे की ब्रेड जो है उसको आप चूज़ करें। ब्राउन ब्रेड में खीरा, टमाटर और चीज़ लगाकर सैंडविच बनाएं। ये बच्चों व बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आता है। और इडलियां भी आप बनाती हैं, सांभर भी आप बनाते हैं, लेकिन इडली कई बार बच जाती है तो आप उसको फेंके नहीं, इडली के छोटे छोटे पीसेस काट लें और उसकी क्वांटिटी के अनुसार थोड़ा सा उसमें प्याज और टमाटर का तड़का लगाकर उसको भी स्वाद बनाकर खाया जा सकता है।

चुरा लिया है तुमने जो दिल को। बहनों, नज़र नहीं चुराना अपने प्यार को, खतों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहना, क्योंकि आपका प्यार जो है वो हमारे अंदर जो है ऊर्जा का काम करता है। आज का कार्यक्रम इतना ही। अपनी रेडियो सखी रजनी मोदी को दे आज्ञा। नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports.

0: asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 international in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है. ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी. मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ. आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं.
0: Prime Minister Modi also laid the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. Under phase 2, a 41-kilometer north-south metro corridor will be developed from Prahladpura to Todimur, connecting the industrial and residential areas of Sitapura and Vishwakarma industrial area through 36 stations. We now take you live to the Prime Minister's address in Balotra.
1: बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है साथियों. राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है. आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती. बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है.
0: Earlier, Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that no matter how big or unexpected the challenge may be, the

0: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को

0: इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध।

0: अध्याय एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म ताल का ये नगमा भी आपने सुना। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत एआर रहमान का। लीजिए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की ही आवाज़ में एक और गीत। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

फिल्म लावारिस का ये नगमा अभी आपने सुना। गीत के बोल जावेद अख्तर के थे, संगीत राजेश रोशन का और आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं इन्हीं आवाज़ों में एक और नगमा। गीत के बोल समीर के हैं, धुन बनाई नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

अलका याग्निक और कुमार शानू के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोत्रा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बालोत्रा में पचपैदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत आने का अंदाज़ा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 400

करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 30,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफ़र कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोज़गार मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज़ किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपये सर्फ किए जाने का निशाना रखा गया है। वेनेजुएला के वजीर खारजा इवान गिल ने मुल्क में तबाह कुन जलजले से मुतासिर होने वाले अफराद की बरवक्त मदद के लिए भारत सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब गिल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत कायम किए गए भारत के फौजी फील्ड अस्पताल का दौरा किया, जहां जलजले से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में वेनेजुएला के आवाम को रात दिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वेनेजुएला की वजीर खारजा ने बताया कि इस फील्ड अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरू के सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने पर क्यूकू फुजीमोरी को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी करीबी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है और वसी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी साझेदारी को मजबूत करने के लिए पाबंदे अहद है। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। यह दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू और कश्मीर में हमलों की मंसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाज़त देगा कि वह इन अफराद की इकतसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। इस तरमीम ने मरकजी हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो कानून के तहत न सिर्फ तंजीमों बल्कि अफराद को भी दहशतगर्द करार दे सके। इस तरमीम के नफाज के बाद से हुकूमत ने 80 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराए के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराए ने मजीद बताया कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म्स, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को तहफ़ फराहम करना है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद है और भारत और इसराइल के दरमियान इकतसादी साझेदारी भी मुस्तहकम होगी। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आदम आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की 6 रोज़ा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं, जो सरकारी तौर पर अंजाम दी जाएंगी और ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। हुकाम को उम्मीद है कि इन रसूम में लाखों सोगवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए सलामती और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए गए हैं। सीनियर ईरानी रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने तेहरान के मुसल्ले आजम पर आयतुल्ला खामेनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन रसूम में भारत की नुमाइंदगी बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा की वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और आवाम की तरफ से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हालिया जंग में हलाक होने वालों के कुनबों से भी

0: ताजियत का इजहार किया। आयतुल्ला खामिनेई 28 फरवरी को इसराइल और अमरीकी हमलों में शहीद हो गए थे। उनके जनाजे का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद इस महीने की 9 तारीख को मुकद्दस शहर मशहद में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद ईरान में 40 दिन तक सोग मनाया जाएगा। अवामी जमहूरिया कांगो ने एबोला मर्ज में मुबतला 1,502 अफराद की तस्दीक हुई है। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि वहाँ की सूरत हाल संगीन है। 473 अफराद की मौत की भी तस्दीक हुई है। सेहत से वाबस्ता हुकाम ने बताया कि 628 मरीजों को या तो अलग थलग रखा गया है या उनका इलाज चल रहा है। 229 अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। ये मरज इतूरी और शिमाली क्यू के मशरकी सूबों में अभी अभी फैल रहा है। आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि मुतासर इलाकों में सिक्योरिटी ना होने और मुसल्ला टकराव की वजह से मरीजों का पता लगाने और उनके इलाज में रुकावट पेश आ रही है। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैनुल अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा। बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का कहना है कि रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से 21वीं मरतबा ज़ापोरेजिया एटमी पावर प्लांट ZNPP की बिजली की सप्लाई मुनक़त हुई है। इसकी वजह से एटमी तहफ्फुज के बारे में तश्वीश पैदा हो गई है। IAEA का कहना है कि फौजी सरगर्मियों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। एजेंसी के मुताबिक एटमी पावर प्लांट के इमरजेंसी डीजल जनरेटर ने एहतियात के तौर पर आज खुद बिजली की सप्लाई निज़ाम को बंद कर दिया है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बलोत्रा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। वजारत दाखिला ने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں معروف نغمہ نگار بھرت ویاس کے لکھے ہوئے، جن کا آج یوم وفات ہے۔ بھرت ویاس 6 جنوری 1918 کو بیکانیر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم انہوں نے کلکتہ میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں انہوں نے جو پہلے فلم لکھی، یعنی جس کے پہلے نغمہ نگار تھے، وہ فلم تھی دہائی۔ اس کے بعد ایک انہوں نے فلم ڈائریکٹ بھی کی تھی 1949 میں، رنگیلا راجستھان۔ ان کے اگر نغموں کی بات کی جائے تو ایک پرارتھنا بہت مشہور ہے، مالک تیرے بندے ہم، یا پھر ایک نغمہ ہے ان کا، یہ کون چترکار ہے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے نغمے دیے ہیں اور خوبصورت نغمے دیے ہیں۔ کچھ انہی کی فلموں کے نغمے، یعنی کہ انہیں کے لکھے ہوئے نغمے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کے میری پسند پروگرام میں۔

आज के मेरे पसंद प्रोग्राम में सामिन हम आपको सुनवा रहे हैं भरत व्यास के लिखे कुछ फिल्मी नगमे।

की जाए तो रानी रूपमती फिल्म का एक नगमा था, लौट के आजा मेरे मीत। ये नगमे बड़ा खूबसूरत था और इसने काफ़ी शोहरत न सिर्फ भरत व्यास को दिलाई बल्कि इस नगमे के जरिए फिल्म को भी काफ़ी शोहरत हासिल हुई।

सामीन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज सुनिए मुख्तलिफ गुलकारों के गाए गुजराती लोकगीत।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे मुख्तलिफ गुलकारों के गाए गुजराती लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोकगीतों का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ठोकर फिल्म का नगमा। मौसिकार थे श्याम जी घनश्याम जी। और समझ लीजिए, सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में वीर दारा फिल्म का नगमा। नगमा की आवाज़ जावेद अख्तर, मौसिकार मदन मोहन।

0: रूपमा राठौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे सालिम सुलेमान की मौसीकी सजय नगमा, फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजय नगमा, फिल्म है उपासना।
1: सिखा दूं।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था अनु मलिक ने। फिल्म थी मैं हूं ना। और सामने जब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, मोहम्मद रफी राशा भोसले की आवाज़ों में मजरू का लिखा गीत, मौसीकार हैं आडी बर्मन, फिल्म है तीसरी मंजिल।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नगमा। मौसीकार थे ओपी नैयर। और लीजिए सुनिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है वक्त की दीवार, नगमा निगार अनजान, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और सामने आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार राहुल बर्मन।

सामिनी सिनेमा के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का यह प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल्कवामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बालोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पंचपादरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरबा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमदोरफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफ़र कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सयाहत, तजारत और रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज़ किया है, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनात के मकाम पर CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है।

वेनेजुएला के वजीर खारजा योवान गिल ने मुल्क में तबाहकुन जलजले से मुतासर होने वाले अफराद की बरवक्त मदद के लिए भारत सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब गिल ने ऑपरेशन अविस्टार्ट के तहत कायम किए गए भारत के फौजी फील्ड अस्पताल का दौरा किया, जहां जलजले से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में वेनेजुएला के अवाम को रात दिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। पाकिस्तान में रहने वाले ये दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाज़त देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करें, असलहे की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियार हासिल हुए हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2029 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये ने मजीद बताया कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म्स, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को तहफुज फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सम्त में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है और भारत और इसराइल के दरमियान इकतसादी साझेदारी भी मुस्तहकम होगी। ईरान में साबिक रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं, जो सरकारी तौर पर अंजाम दी जाएंगी, और यह सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। हुक्काम को उम्मीद है कि इन रसूम में लाखों सोगवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए सलामती और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए गए हैं। सीनियर ईरानी रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने तेहरान के मुसल्ले आजम पर आयतुल्ला खामनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन रसूम में भारत की नुमाइंदगी बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलकत पवित्र मारग्रेता ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मारग्रेता ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हालिया जंग में हलाक होने वालों के कुनबों से भी ताजियत का इजहार किया। बैन अवी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का कहना है कि रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से 21वीं मरतबा जापोरिजिया एटमी पावर प्लांट ZNPP की बिजली की सप्लाई मुनकता हुई है। इसकी वजह से एटमी तहफ़ के बारे में तश्वीश पैदा हुई है। IAEA का कहना है कि फौजी सरगर्मियों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में रात भर की कार्रवाई के दौरान 3 नौजवान बलोच अफराद के लापता होने की खबर मिली है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी

0: हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को हब्स और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैन अल्कवामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी कतारी के तर किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म टू स्टेट के इस गीत के साथ। आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपद को। फिल्म का नाम था टू स्टेट। श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए फिल्म हीरो से ये गीत। आवाज़ है सलमान खान की, गीत कुमार का है और संगीत अमाल मलिक का।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
0: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
0: जी।
2: और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
0: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
2: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है, हम अच्छा। प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ
0: अच्छा,
2: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गाँव को हरा भरा बनाए।
0: तो ये कब शुरुआत की आपने?
2: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
0: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
2: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
0: जी,
2: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
0: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
2: शुरू में जब समाज में गए तो इतना

0: मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है, शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है, तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले हमारी

0: बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। तो जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और

0: उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है। और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है

0: भूमि होती है उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जो हम वृक्षारोपण करते थे वो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है, जगह में, उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके,

0: और मैं कहता हूं, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, वो पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए,
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे, तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं।
1: अरे
0: जब
1: वाह,
0: हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू मरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति शुक्ला को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म जब वी मेट में मोहित चौहान को। गीत इरशाद कालमी का है और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम था तेरे नाम। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सराय की। संध्या 6:30 से संध्या 7 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुतकर्ता होंगे वेद प्रकाश वर्मा। आज चर्चा के विषय होंगे जहर छोड़ो जैविक अपनाओ, बाल विवाह एक अभिशाप, बरसात के पानी का सदुपयोग और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी आपको दी जाएगी। संध्या 7:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 से रात्रि 9:15 तक आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन, समाचार संध्या और न्यूज़ @9।

श्रोतो रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका और 10:00 आप सुन पाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11:00 आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आज की ये सभा हमारी संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन AIR पर। संध्या के 6:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सराय की

0: इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडे किते आज दा प्रोग्राम घिन के हाल चाल हिन तुहाडे, तुसा सारे ठीक ठाक हो सो ना? ते आज दे प्रोग्राम में मैं घिन के आई हाँ सौम्या दुआ दी एक लोक कहानी कबीली ते वन सुवन्ने सिराई की गीत। प्रोग्राम दी शुरुआत करें दे हाँ सौम्या दुआ दी कहानी नाल। कहानी दा नाम है कबीली।
1: एक डिहारे नंदू दा हां थिया शिव मंदिर विच मत्था टेकन दा। नंदू सोचन लगा कल्ले किथा वेसा, गुबली पौड़ियां किवें चढ़सी। गुबली नंदू दी त्रिमत है, गुबली बहु ठुल्ली है ना वांगू। वद भी नंदू सोचिया कोशिश करे सा प्यार ना लखे सा ता मन वेसी। नंदू, ओ गुबली गुबली लव यू डियर है जी। गुबली हिक दम आख्या लव यू डियर, अज की थी गया की आखना चाहते हो, लव यू डियर रखें दे पे हो। नंदू, कुछ भी कहनी दिल करेंदा पे हई, छट तू मन सी कहनी। गुबली, आखो मन वेसा तुसा को डर लगदा पिया है। ओ जोर दी हसी, गुबली दवरी सोटे नाल मिर्ची कुटेंदी पई हई। नंदू, हाँ डर ता लगदा ही है, तू ठुल्ली है मैं कख जिया। गुबली हाथे सोटा चाके, आखो केडी गल है जेड़ा अख नहीं सकदे तुसी भी ना। नंदू, कम ता छोड़ ता डिसे सा सोटा थल्ले तरक। गुबली, आखो कम ना करा ए केड़ी गल थई, सोटा हुण भी गुबली दे हथ विच है। नंदू, अखेंदा प्या हां कम ना कर रुकवंश, तू ता सुन दी कहनी। गुबली, किथा करेंदी पई हां, छोड़ ता दित्ता है। नंदू, सोटा ता थल्ले रखिया कहनी, गल्ला करेंदी है तू मिर्चा कुटेंदी पई है, समझ आंदा है कुछ? ए सोटा चा के डे मरे सीता। गुबली गुस्से विच, रख दित्ता, खुश थी वंजो, डिसो हुण की अखेंदे पए हो, मेकू डेर थींदी पई है। नंदू, सुन सुन ना, ओ पहाड़ी वालिया मंदिर है उथे वंजना है, सुपना आया हाई हां करेंदा पिए है वंजा, तेकू भी गिन वंजा नाल। गुबली गुस्से नाल, कमले थी गए हो, मेकू भी कमली समझिया है, मेरा जिसम नहीं डिसदा, मैं 500 पौड़ियां चढ़ सकदी हां। लव यू डियर रखेंदे हो, हुण समझी तुसा चांदे हो हार्ट अटैक थी वे, पौड़ियां तो डिग पोसी मर वे सी, मैं मर वे सा दूजी गिणा सो ठुल्ली आ इस वास्ते, वाह जी वाह। नंदू, ना गुबली ना, तू ता मेरी जान है, तू ता मेरी मान है, हुण चुप थी वंज, मेरा इवें कोई मदबल कहनी। गुबली, चुप थी वंजो, नैण मटक्का करण दा हां थींदा पिया है, वंजो कर घिनो। नंदू, ना ना, तेरे सिवा मेडा केर भी कहनी, जेड़ा तू मेडी सेवा कीती है होर कौन करे सी। मिठी राणी, देख मंदिर वे सू मेकू तेरे नाल वंजना है, त्रिमत नाल होमना चाहिदा है, नाल नाल टुरसा तेरे पौड़ियां भी नाल नाल चढ़सा, बा बा के आराम नाल वेसू, वेले सवेले निकलसू, शामी आवेसू। गुबली, बालकां दा की थी सी? नंदू, दोनों घर होसन जंदरा ला के वंजेसू, अंदर खेड़ दे रासन, सवेले दोनों धा के तैयार थिए, जंदरा ला के होले होले टुरदे टुरदे, कदी बा के कदी टुरद के सफर तय किता, रस्ते विच जंगल पिया गुबली थक के वतवा गई। नंदू, की थी गया, सुन इथे बावन पानी पी घिन पराठे खा घिन, त्रे लगी होसी पानी पी घिन। गुबली, त्रे ता लगी है पानी डे वोचा, टुर टुर के हां लुड़दा वेंदा है, धुप भी तेज थींदी पई है, दोनों होले होले टुरदे रहे,

डुपारी थी गई हई गुबली कूं धुप बहुत तेज लगन लगी। पसीना भी आंदा पिया हई सुनसान जंगल गुबली दीपा जेवा छम छम छम करें दी पयन। गुबली बहु तेज धूपे मैं टुर कह नहीं सकती तुसा जिद करें दे हो की करा। नंदू मेडी गुबली सर ते चुन्नी कर घिन ओडेक बहु वड्डा बरगद दा दरख्त आंदा पिया है उथा बा के रोटी खांसू। तुरदे तुरदे और बरगद दा दरख्त भी बहु दूर आई बहु पुराना दरख्त आई हजारा जड़ा। गुबली इन्ना वड्डा दरख्त पहली बार देखिया हई दरख्त दे तले बा के छां विच ठंडी ठंडी हवा खाती। नंदू भी इन्ना वड्डा दरख्त देख के घूमदा रिया। गुबली बा वंजो घूमदे रासो घ्यू पाते पराठे ता चार कट घिनो पानी भी डे वोचा। नंदू ओ भगवान घिन वट त्रे लगी आ पानी पी घिन। गुबली तुसा भी घिन छोड़ो घ्यू पाते पराठे नरम हिन। नंदू तू खा घिन हुड़े खासा। नंदू घूमदा पिया हई दरख्त को हिक चिट्टा मकोड़ा नंदू दे मोंडे ते ढह के बा गया। कुछ देर विच नंदू को लग्या मेकू आवाज के डेंडा पिया है कौन हो सी। इत्थां उत्थां देखिया डिसदा कोई भी कहनी आवाजा आंदी रही मकोड़ा मोंडे ते हाई डिसदा किवें। मकोड़ा होले होले गिची ते आ गया तां भी नंदू को कहनी पता चलिया आवाज कित्थों आंदी पई है केर बुलाइंदा पिया है। चिट्टे मकोड़िया को बहु गुस्सा आ गया सोचण लगा एक केड़ा इंसान है जेड़ा मेरी गल दा जवाब भी नहीं देंदा। और टुर के नंदू दे कंधे उत्ते बा गया उत्थू आवाजा दित्ती वत पुछिया कौन हो कौन हो। हुन नंदू को लग्या उत्ते टुरदा पिया है ओ हथ नाल झटकिया ता मकोड़ा हथ दे विच आ गया। चिट्टा मकोड़ा जोर नाल अखेंदा है सुनदे कहनी बुलेंदा पिया हाम पुछदा पिया हाम कौन हो समझ नहीं आंदा। नंदू घबरा गया एक ही मकोड़ा इंसान वंगा बुलेंदा पिया है। ओ डर गया ह ह ह के बोलिया ना ना असा ता मंदिर वंजना है इत्थे ठंडी छां देख के बागे असा कुछ भी कह नहीं किता। चिट्टा मकोड़ा कल्ले हो। नंदू ना ना नाल गुबली है। चिट्टा मकोड़ा एक गुबली कौन है। नंदू मेडी त्रिमत मेडी जान है मेडा मान है। नंदू हैरान परेशान थी के जवाब देंदा पिया है। चिट्टा मकोड़ा ये सारा इलाका साड़ा है इत्था बावना नहीं चाहिदा हुण तुसा गुबली दे नाल साडे जंगल दी राजा कबीली नाल मिलना पोसी ओ जेड़ा कुछ अखे सी ओ करना पोसी। नंदू बहु डर गया पसीने पसीने थी गया ओ सोचिया बेबे ता बाऊ जी अखेंदे हाम जंगल दा राजा शेर होंदा है ओ वड़ा तेज होंदा है एक कबीली राजा कौन है शेर को भी वड़ा जानवर हुण की थी सी मेडी गुबली को भी ठुल्ला। गुबली अजी सुन दे हो किथे गए जिथा वंजो उथा तुसा गुम जान दे हो परेशान थी गई हाँ मैं ना होवा ता की थी सी इना दा। ओ लबदे लबदे नंदू दे कोल आ गई। नंदू मुंह ते उंगली रख के चुप रावण दा इशारा किता गुबली ता समझी कहनी इशारा। नंदू दे हथ ते चिट्टा मकोड़ा आसर जमाया होया हाई हथ कमदे पए सन। मकोड़ा आख्या मैं ढा वेसा कमणा बण कर दे। नंदू मकोड़े को आख्या चुप थी वंज गुबली तेडी गल सुनी ता उंगली रख के तेरा पापड़ बना दे सी। चिट्टा मकोड़ा चुप थी वंज कख जिया आपने को साम के रख मैं को इत्थे केर भी कुछ भी नहीं कर सकदा साड़ी फौज दिथी है कप के खा वे सी हुणे सरदार मिल सी ता ते को साड़ी ताकत दा पता चल सी टुरु हुण सरदार जो भी करे सी। नंदू ही गल डिसो तुसा चिट्टे मकोड़े हो तुसा इंसाना वंगू किवें बुलेंदे हो। मकोड़ा चुप थी वंज शाणा ना बन नाल नाल टुण हूं तेडी गुबली है ना हूं को भी आख। नंदू गुबली सुन मकोड़े दी फौज विच फस चुके हां हुण तू भी नाल नाल टुर। गुबली ओ समझी कहनी की अखेंदे पए हो कमली कमली गल्ला करेंदे

0: पयो। नंदू चुप थी वंज भगवान नाल ना टुर साड़े नाल नाल वंजन लगे। पिछू मकोणिया दी फौज दरक दे कोल पहाड़ी सोना जिया झरना सोनी सोनी पक्षियां दी आवाज़ा सारिया कुछ सोना सोना। इंसान दी बू जंगल विच आंदे ही सारे एक पासे थी गे पंखी ता मवेशी चिट्टा मकोड़ा। सुनो हुण गुफा विच वंजड़ा है। नंदू सुनो जी घबरा के आखण लगा साकू गलती थी गई असा हुण इत्था ना आसू। नंदू को लगदा पिया है जंगल दा राजा शेर होंदा है ए सरदार होर वड्डी जानवर होसी हुण असा बचना कहनी साडे गोश को चट चट के सारे पार्टी मणासन। नंदू गुबली दा हथ फड़ के रोवण लगा। गुबली किथे वेंदे पए हो ए मंदिर दी पहाड़ी के नी। नंदू गुबली सच्ची अखेंदा पिया हाँ अज जान बच वेसी ता जंगल विच कदई ना आसा। बेबे दी कसम खांदा हाँ मे को पता होंदा ए थीवड़ा है ता ते को इत्थे कदी भी ना लांदा। तू ते मेरी जान है मेरा माण है। दोनों गुफा विच गिए सोने सोने नजारे हाँ कम दा वेंदा है मरण दा ख्याल आंदे ही पसीना आ गया। कुछ भी समझ केणी आंदा पिया है। गुफा बहु लंबी हाई गुबली थक के त्रुट गई त्रे लगी पई हाई बावर दी जगह कहनी पिछू मकोणिया दी फौज चिट्टा मकोड़ा। सुनो इत्थे बावंजों सरदार जेड़े वेले आसी ता असा खबर डेसू चा असा कुछ खा के आंदे हाँ। गुबली सुनो ए की थींदा पिया है मंदिर कहनी। नंदू आख्या असा जंगल विच फस चुके हाँ एक सरदार है कबीली ओ मकौणियां दी फौज हाई उना दी जंगल दी सरदार। जंगल दा सरदार ते शेर होंदा है बेबे भाभी लाला भाभी अखेंदे हान इथां कबीली सरदार है शेर को भी वड्डा जानवर। हुण तू ता मैं मर वेसू बचड़ा कहनी साडी हुण अखीरी मुलाकात है। बालका दा की थी सी कुछ समझ कहनी आंदा पिया। गुबली दहाड़ा मार मार के रोवण लगी। कुछ देर बाद ढोल नगाड़िया दी आवाज आवण लगी। छोटी वड्डी चीटियां मकोणिया दी झुंड जंगल दे सारे जानवर शेर हिक हाथी बहुत सोना सजिया होया वो सब दे विच टुरदा पिया है। नंदू गुबली नजारा देख के हैरान थी गिए दुख भी थिया हुण असा नारासू। हुण होर वड्डा जानवर कबीली आसी साकू खावे सी वत सारे पार्टी मनावनी है होर की। ढोल बजावण थींदा पिया है वत हिक दम शांत थी गया वत हिक आवाज आवण शुरू थई तुसा दोनों साडे इलाके विच की करेंदे पए हो। एक घूमण दी जगह है हूँ देखया केर भी डिसदा कहनी बुलेंदा कौन पिया है। दोनों डर गिए वत आवाज आई कब घिनसा गिच्ची हुण तुसा दा बचना मुश्किल है। वत मकोड़ा कन दे उत्ते बा के आख्या ए साडी कबीली सरदार दी आवाज है माफी मंग घिनो। नंदू माफी मंग घिण दे हां हू दिसदी नहीं पई किथा है जंगल दा राजा ता सारिया विच आई। चिट्टा मकोड़ा ओ साडे मेहमान हिन ए साडा इलाका है इथा सरदार कबीली दा राज है। ओ थल्ले खलोती पई है थल्ले देखो। तलवार घिन के नंदू गुबली थल्ले देखिया उथा चिट्टी खलोती पई है। नंदू सुनो तुसा ता कबीली सरदार दे कोल घिण के आवना है ए ता चीटी है। चिट्टा मकोड़ा जोर नाल हसिया कमला थी गया है कबीली दा मतबल कह नहीं जानदा ए साड़ी सरदार कबीली है। चीटी को मुल्तानी विच कबीली आग देन सारी फौज जोर जोर ना हसन लगी। नंदू ता गुबली भी हसन लगे जोर जोर नाल।
1: कबीली हुणे तुसा सौम्या दुआ दी ए कहानी सुनदे पए हवे। सिराय की बहनो भरावो ए कहानी तुहा को किंज दी लगी साकू लिख के भेजना ते हुण सरायकियां दे सुभा मुताबक गीतां दी चस गिनो तुहा को सुनवेंदे हां हिक बहु वधिया सिराय की गीत बोल हिन खर्चा साडा ते नखरे लोकां दे ਗਾਵਣ

वाकई गीत बहुत मजेदार है ना। ते हुन तू हाकू सुनवेंदे हां सुरेंद्र कौर दा गाया एक गीत, चन किथां गुजारी आई रात वे।

सुरेंद्र कौर दे गाए। इस गीत तों बाद प्रोग्राम दी आखरी पेशकश महक मलिक दा गाया गीत कदी यार होन दा साडा कदी प्यार होन दा साडा। क्या बोल हिन ते क्या गायकी है, लो चस घिनो।

0: ਗੀਤ ਤੁਸਾਂ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਕੋ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਕੋ ਖਤ ਘਾਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरायकी। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ीं। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति

0: साधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
3: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमार

0: विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। दो दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ीं। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद में अनियमितताओं की जाँच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की दो बूंद जिंदगी की पिलाई जो

0: निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वायल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों एक दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सीएमएचओ ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलोअप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई उ राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासा री बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। इस मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। वह चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दोवड़ी बनावण री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावण

0: ਕਾਮਰੀ ਸਰਵਾਤ ਕੀਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੂਤਾ ਵਾਲੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਏ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਵੀਕਰਣੀਏ ਊਰਜਾ ਹਲਕਾਓਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਰੂ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਓਂ ਬੱਤਾ ਖਰਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਵੈ ਕਹਿਓ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਰੀ ਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰ ਖੁਦਰੇ ਪਾਣ ਉਭੋ ਭਾਰਤ ਬਣਾਵਣ ਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਰਾ ਈ ਕਾਰਖਾਨਾਓਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਮੋਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੂ ਨੌਕਰੀ ਧੰਦਾ ਰਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਲਾ ਅਰ ਔਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਵੈਲਾ।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी कहो कि पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टेम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण ई चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। वह कहो कि दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानियों जूझ रिया हा, वहाँ भगत ही भारत आगे री सोच उन नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: प्रधानमंत्री कहो कि भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बधावण सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो कि सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथे काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागण वाला नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਰੀ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਰੋ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕਾਚਾ ਤੇਲ ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਨੀਕ ਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਨੀ। ਵੈ ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਨ ਰਾ ਤਹਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਰਿਸਰ ਮਾਏ ਖੇਜੜੀ ਰੋ ਪੌਦੋਈ ਰੋਪਿਓ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋ ਆਭਾਰ ਜਤਾਤਾ ਥਕਾਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੂ ਮਾਥੋਂ ਉੱਚੋ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਬਤਾਇਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਏ ਪੂਰੋ ਦੇਸ਼ ਅਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇ ਔਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਕਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਆਦਰਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद माए जनता मौजूद रही। इन पहली प्रधानमंत्री जोधपुर माए हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रुपए री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल माए जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनो है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा

0: थियो। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुनिए अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनिया सगला परिवारां ने वेद भाई की घणी घणी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज खेती अन्न उत्पादन को साधन ही कोनी रह गई, बल्कि आ अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य भी जुड़ेड़ी है। पिछले कई दशकों में आप रसायनिक खादा और जहरीला जगह कीटनाशक है बांगो उपयोग तेजियों बढ़ तो देखने लग रहा। यूं किए के उत्पादन तो थोड़ा टाइम खातर बढ़ो है, पर इंगा दुष्परिणाम भी किए के सामना आने लग रहे है। माटी की उर्वरकता घटन लग रही है, पानी का जगह स्रोत है वह गंदा होने लग रहा है और किसान भाइयों की लागत भी किए के बढ़ने लग रही है। सागी किए के लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव जो को है वो अपने देखने मिलने लग रही है। इन खातर भाइयों, आज अपने देश में एक नई सोच विकसित होने लग रही है, जहर छोड़ो और जैविक अपनाओ। जैविक खेती किसान भाइयों बा खेती है जबकि रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक को उपयोग इनमें कोनी करो जावे। इनकी जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, नीम आधारित कीटनाशक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो को है वो करो जावे, इनमें माटी की उर्वरकता बनी रहे। सागे किसान भाइयों, पर्यावरण ने नुकसान भी कोनी वे, पीएच मान जो को है वो संतुलित रहे धरती को। जैविक खेती केवल किए के खेती की तकनीक ही कोनी बल्कि जीवन जीण को एक स्वस्थ और टिकाऊ पद्धति भी मानी गई है। आज खेतों में आप देखा कि यूरिया, डीएपी और कई तरह का रासायनिक कीटनाशकों को ज़्यादा उपयोग होने लग रहे है। आ रसायनों को कुछ हिस्सों फसलों में रेजे और भोजन के माध्यम अपने शरीर में प्रवेश करे। तो भाइयों, लंबे टाइम तई ईशा खाद्य पदार्थों को सेवन करने किया गया बीमारियाँ जी की है अपा वे देखने लग रहे हैं और केवल आदमियों में ही नहीं पशु पक्षी और उपयोगी जीव भी आ रसायनों की चपेट में किया गया आने लग रहा है, प्रभावित होने लग रहा है। खेतों में रहने वाला जिया केंचुआ है वह माटी ने उपजाऊ बनावे और बांगी संख्या भी किए गया कीटनाशकों का प्रभाव लगातार कम होने लग रही है। शुरू में तो किए गया जैविक खेती का उत्पादन थोड़ो कम हो सके, पर धीरे धीरे किया माटी की गुणवत्ता सुधरे, पीएच मान में भी सुधार आवे और उत्पादन जो है वो स्थिर हो जाए। सारों बड़ी बात आ है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक पर होने वालों खर्चों की है वो आपनों काफ़ी कम हो जाए। सागी किसान भाइयों, जैविक उत्पाद बाजार में किए के ज़्यादा कीमत पर बिके, आज शहरों में लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होने लग रहे हैं और जैविक फल, सब्जियाँ और अनाज खरीदने पर ज़्यादा पसंद करें। यूँ किए के किसान भैया ने बेहतर आय भी प्राप्त होने लग रही है। बात करें किसान भाइयों, जैविक खेती का मुख्य लाभ जो है तो पहला लाभ वो है कि माटी की उर्वरकता बढ़े, दूसरो पानी को संरक्षण होए, तीसरो रासायनिक प्रदूषण कम होए, चौथो पर्यावरण सुरक्षित रहे और पांचवों स्वास्थ्य अपनों बेहतर रहे। सागी किसान भाइयों की लागत कम होए, जैव विविधता ने किया कि बढ़ाव मिले और सागी किया कि भविष्य की पीढ़ियां खातर सुरक्षित खेती को एक आधार भी सागे सागे तैयार हो जाए। अपनी सरकार भी किया कि जैविक खेती ने बढ़ावा देने खातर बहुत सारी योजना चला रखी है और किसान भैया ने प्रशिक्षण, जैविक खाद बनाने की जानकारी, प्रमाणन की सुविधा और बहुत सारी योजना के माध्यम सहायता दी जाने लग रही है। सागी कई राज्यों में जैविक उत्पादों की बिक्री खातर की है कि विशेष बाजार भी विकसित किया जाने लग रहे है। जगह अपना कृषि विशेषज्ञ वह टेमो टेम पर किसान भैया ने सलाह देवे कि वह एकदम पूरी खेती ने जैविक न बना के धीरे धीरे इनमें परिवर्तन करे। पहला खेत के एक हिस्से में जैविक खेती शुरू करे और अनुभव प्राप्त करने के बाद की है पूरा खेत में इन्हें लगानी चाहिए। और किसान भाइयों, बात करें घर में भी आप जैविक अभियान आप किया चला सका, तो जो घर में थोड़ी सी अपने कहीं जिगा हुआ तो रसोई को जो को जैविक कचरो है जिया सब्जियां का छिलका, फल का छिलका और सूखी पत्तियां उनका कंपोस्ट खाद आप तैयार कर सका। इन खाद का उपयोग घर में सब्जियां और पौधा में करो जा सके और जब भी आप बाजार जावा तो जैविक उत्पाद अपना

खरीदना चाहिए। यूँ किया कि जैविक खेती करने वाला किसान भैया ने किए प्रोत्साहन मिल सी सगी स्कूल कॉलेजा में किए गए विद्यार्थियों ने जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जान लाग रही है। सगी स्कूल में किचन गार्डन बनाए जान लाग रहे हैं जठे छात्र जगह है वह खुद जैविक तरीकों सब्जियाँ उगाना सीखे। यूँ किया कि बच्चा में पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली की समझ विकसित हुए। जे आज भी अपना रासायनिक खेती पर पूरी तरह निर्भर रहा तो आने वाले टाइम में किया कि माटी की उर्वरता और भूजल दोनों गंभीर संकट को सामना करेगा। और इन खातर किया टाइम ने तय अपना खेती की इसी पद्धति अपनानी हो सी जबकि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। तो किसान भाइयों जैविक खेती केवल किसानों का विषय को नहीं आ हर नागरिक की जिम्मेदारी है क्योंकि स्वस्थ भोजन को अधिकार सारंग हुई है और अपने स्वस्थ शरीर सुरक्षित पर्यावरण उपजाऊ माटी चाहिए तो अपने रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करनी पड़ सी और जैविक खेती ने किए क्या अपनाना पड़ सी। तो किसान भाइयों बातचीत आपा और कर सा पर अब टेम है एक लोक रचना सुनाने को तो थाने सुनावा सुभाष कटारिया की गायडी आलोक रचना।

सारा परिवार आपका टाबरा उपया कम उम्र में ही कर देवे। बाल विवाह को सारू मोटो कारण गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियां हैं और सागे किए के लैंगिक भेदभाव भी है। कई परिवार आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्यों किए का आपका टाबरा को ब्याह कम उम्र में कर दे और कई लोग किए के परंपरा और सामाजिक दबाव के कारण भी ईशो करे, पर आ सोच बच्चा गए अधिकारों को हनन करे और कानून के हिसाबों बाल विवाह करनो, बिंगमा सहयोग देनो, बिंगो आयोजन करनो दंडनीय अपराध है और दोषी व्यक्ति ने कारावास और जुर्माना को भी प्रावधान है। इनके बावजूद कानून जो को है वो भाइयों जद ही प्रभावी हो सी जद समाज खुद इन कुरुति के विरुद्ध खड़े हो सी। आज आवश्यकता है प्रत्येक टब्बर ने अपा स्कूल भेजा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त भी न करवावा और आपके जीवन का निर्णय जो है वे खुद लेस के इतो बने योग्य बना दें। प्रत्येक माता पिता ने चाहिए कि भाई आपके टाबरांग ने आगे बढ़ने का पूरा अवसर देवे और समाज ने भी इसी सोच आपने विकसित करनी चाहिए कि जठे बेटो और बेटी दोनों ने ही समान अवसर जगह है वह प्राप्त हो उसके। और किसान भाइयों, बाल विवाह किसी भी सभ्य समाज खातर एक अभिशाप है। ए बच्चा का बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बंगे उज्ज्वल भविष्य ने छीने। तो अपा सारा मिलके वो संकल्प लेवा कि बाल विवाह वर्गी कुप्रथा ने जड़ों अपा समाप्त करांगा और हरेक बच्चे ने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन को अधिकार दिलाने में आपनो योगदान देवांगा। तो भाई वो बातचीत आप और कर सा, पर थाना सुनावा ओ गीत।

किसान भाइयों, बरसात को पानी प्रकृति को एक अनमोल उपहार है। जे आप इनको सही ढंग संग्रह और उपयोग करा तो पानी की अपने कभी कमी को नहीं आवे। भूजल स्तर में गिरावट और सूखे वर्ग की समस्याओं काफ़ी हद तक आप बच्चों जा सके। और आप जाना कि बरसात को पानी अपने लिए कितो जरूरी है और इन उपयोग जो है वो किसान भाइयों आपने किया करना है। किसान भाइयों, भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और अठे की ज़्यादातर खेती के मे पर निर्भर करे। पर जठे एक और बरसात के दिनों में सड़क नालियाँ और नदियाँ में पानी बह तो अपने दिखाई देवे, बटे ही क्या बरसात के कई महीने बाद अपने बहुत सा जगह क्षेत्र है बटे पानी की भारी कमी हो जाए। इनको मुख्य कारण है बरसात को पानी को सही संरक्षण ना होनो। अपने देश में होने वाली कुल वर्षा को बहुत बड़ो भाग बिना उपयोग के ही बह गए समुद्र में चले जावे। जे आप ई पानी ने थोड़ सो हिस्सों इनको बचा लिया तो करोड़ों लोगों की जल आवश्यकता और सागी खेती की आवश्यकता जी है वह आप पूरी कर सका। इनका कई तरीका भी है जिया छताओं के आगे पानी इकट्ठो करनो, भूमिगत टैंका में पानी ने इकट्ठो करनो, कुआं और बोरवेल ने पुनर्भरण करनो, सागी तालाब और जलाशय में अपना निर्माण करनो और सागी खेता में किया छोटा बांध और मेड़ बनाना वर्षा जल संचय का प्रमुख तरीका है। सागी किया के बात करा बरसात के पानी में अपना सदुपयोग किया करा तो भाइयों, पीण खातर वर्षा जल ने साफ टैंक में अपना संग्रहित करना चाहिए और सही फिल्टरों शुद्ध अपना करना चाहिए। सागी किया के इनको उपयोग पीण खातर भी करो जा सके। बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र में आ एक सुरक्षित जल को महत्वपूर्ण स्रोत है। और सागी किया के बरसाती पानी ने कपड़ा धोने, सफाई बर्तन धोने, शौचालय में साल भर बरसाती पानी का उपयोग अपना घर सका। रिंग माँ किया कि भूमिगत जल की भी सागी बचत हो जाए। अब बात करें किसान भाइयों, बरसात के पानी ने खेती में अपना सदुपयोग किया करा तो किसान भैया खातर वर्षा जल जो है वो अमृत के समान है। खेत तालाब मेड़बंदी और चेक डैम बना के पानी ना रोक सका। यूँ किया कि सिंचाई की लागत भी घटे और फसल उत्पादन भी आपनों सके। बटर सागी किया गया खेत में अपना तालाब बना के भी किया गया पानी बरसात को इकट्ठो कर सका। और सागी किया के मेह का पानी ने जमीन का माप उगाने खातर कुआ और बोरवेल दोबारा अपन भरना चाहिए। यूँ किया के भविष्य में जल की उपलब्धता जिकी है वह बनी रहेगी। सागी घर और सार्वजनिक उद्याना में किए के पौधे की सिंचाई खातर बरसाती पानी का उपयोग बहुत ही उपयोगी है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो महानगर में किए के सीमेंट और कंक्रीट की स्तर होने के कारण किए के पानी जमीन में कौन जा पावे। यूँ वह किया के जल भराव होने लग जाए और दूसरी ओर भूजल स्तर घटतो जावे और जे अपार्टमेंट स्कूल कार्यालय सरकारी भवन जगह है वह बरसाती पानी संचयन प्रणाली जी अपना लिए तो दोहरी समस्या को समाधान भी किया किसान भाइयों सागे सागे हो जी सी। और बरसात का पानी को सदुपयोग केवल पानी संरक्षण ही कौन करे बल्कि पर्यावरण ने भी किया कि लाभ उगावे। यूँ नदियाँ पर दबाव कम हुए, भूजल स्तर बढ़े, सागी माटी को कटाव भी आप देखा कम हुए और बाढ़ ज किया हुआ है बिंगी तीव्रता भी घट जाए। सागे अपने पर्यावरण को सुधार हुए, हरियाली बढ़ा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभावों निपटन में बड़ी सहायता मिले और देश का बहुत सारा जगह राज्य एवं माँ बरसाती पानी संरक्षण ने बढ़ावा देने खातर बहुत सी योजना जी है वह चलाई जावे। जी हाँ, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, मनरेगा के अंतर्गत तालाब निर्माण, ग्रामीण जल संरक्षण परियोजना और स्कूल कॉलेजों में जल जागरूकता कार्यक्रम, आ योजनाओं का उद्देश्य लोगों ने जल संरक्षण के प्रति

जागरूक बनाना और स्थानीय स्तर पर जल संरचना को निर्माण करना ही है। तो किसान भाइयों बात चीत आप और कर सियाँ, पर अब टेम है एक और गीत सुनाने को, तो थाने सुनावा ओ गीत।

किसान भाइयों, अच्छी फसल लेने खातर खेत की जी माटी है बिंगी जांच करवाना अपना बहुत ही ज़रूरी है। माटी की जांच चूँ किए गए अपन ने ई बात को ठा पड़ जाए कि माटी में किसा किसा पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में यार किसा की कमी है। और माटी की जांच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम किए गए माटी को जो पीएच मान हो वो कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और दूसरा जगह सूक्ष्म पोषक तत्वों की सही स्थिति को किए के पतो लगाए जावे। माटी की जगह जांच है बा फसल खातर किए के सही उर्वरक मात्रा यूँ निर्धारित हो रही खतरा जांच बहुत ही ज़रूरी है। सागे यूँ किए गए उत्पादन की जगह लागत है बा अपने किए के कम हो जाए और उर्वरकता जगह है बा बनी रह ज़्यादा उत्पादन फसल को अपना प्राप्त हुए। सागे किए गए रासायनिक उर्वरकों को अनावश्यक उपयोग जो है वो अपना कौन करना पड़े सागे किए गए पर्यावरण के संरक्षण में सहायक रहे। तो माटी को नमूनों आप किया लिया तो माटी की सही जांच खातर नमूनों जो है वो किसान भाइयों सही तरीके में लेना बहुत ही ज़रूरी है। नमूनों जो है वो खेत के न्यारे न्यारे जगह पर अपने लेना चाहिए, बट्ठे की माटी लेनी चाहिए अपने और माटी की खुदाई जी की है वह खुरपी फावड़ा लकड़ी या प्लास्टिक की खुरचनी अपने करनी चाहिए। नमूनों जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर अपने गहराई में अपने लेना चाहिए और सारा नमूना ने मिला के एक मिश्रण तैयार करना चाहिए। नमूनों इकट्ठो करने खातर किया कि बाल्टी या ट्रे या प्लास्टिक टब को अपन

प्रयोग करना चाहिए। उबड़ खाबड़ रास्ता, सिंचाई की नाली, डोली, खाद का ढेर या पेड़ों के आसपास अपने नमूनों नहीं लेना चाहिए। नमूनों अपने इसी चीज़ों लेना है जटे माटी पूरा खेत को प्रतिनिधित्व करती हुए। बरसात के आतो आत बाद नमूनों नहीं लेना चाहिए। माटी को नमूनों जो है वो बुआई गए एक महीने पहले अपने ले लेना चाहिए। माटी ने छाया में सुखा के एक साफ थैली में अपन भर लेना चाहिए। थैली पर किसान भाई को नाम, खेत को विवरण और फसल को नाम लिख के अपन प्रयोगशाला में भेज देना है। और सरकार द्वारा कह के किसान भैया ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाए। इन कार्डों के माटी की पोषक स्थिति उर्वरकों के उपयोग संबंधी सिफारिश की है बाकरेड़ी हुए। मृदा स्वास्थ्य कार्डों किसान भाई सही मात्रा में उर्वरकों को प्रयोग कर सके और खेती ने किए के ज़्यादा लाभदायक बना सके। माटी जाँच चुकी है कि उत्पादकता में वृद्धि हो सी और जब पौधा ने आवश्यकता अनुसार पोषण मिलेगा तो बंगी वृद्धि जिकी है किसान भाइयों बेहतर सिर सगा अपनों फसल उत्पादन बढ़ेगा। सागी किए के अनावश्यक उर्वरक डालने की अपने जरूरत ही कौन पड़ेगी जखू किए के आ लागत अपनी कम हो जाएगी और माटी को स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। संतुलित पोषण माटी की गुणवत्ता लंबे टाइम तक के बने रहे। सागी रासायनिक उर्वरकों को ज़्यादा प्रयोग करने किए के प्रदूषण में किए कमी आवे और सागी किए के हरेक 2-3 साल में माटी की अपन जाँच जरूर करा लेनी चाहिए। माटी परीक्षण रिपोर्ट के हिसाबों अपन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग अपन बढ़ाना चाहिए। एक आसो फसल चक्र भी अपन लेना चाहिए। कृषि विशेषज्ञ है बंगी टेमो टाइम पर अपन सलाह लेता रहना चाहिए। और माटी की जाँच की है वह किसान भाइयों एक प्रक्रिया को नहीं बल्कि एक सफल और लाभकारी खेती की आधारशिला है। जे आप माटी ने स्वस्थ रखेंगे जदि बा सही पोषण दे पाएगी और बेहतर उत्पादन अपने मिल सकेगा। तो किसान भाइयों अपने कने बाजार भाव भी आड़ा है वह भी थाने पढ़ के सुनावांगा पर पहला थाने सुना दिया वो गीत।

भाइयों, आपने अनाज आज का बाजार भाव भी ऐडा है तो बंग बात कर लिया। श्रीगंगानगर अनाज मंडी के भाव की बात करा तो अठा सरसों का भाव रहा 6455 हो लेगे 7259 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5000 हो लेगे 5415 रुपया प्रति क्विंटल। कणक का भाव रहा 2424 हो लेगे 2683 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 5490 हो लेगे 5569 रुपया प्रति क्विंटल। जो का भाव रहा 2115 में लेगे 2235 रुपया प्रति क्विंटल। मूंगा भाव रहा 5350 में लेगे 7195 रुपया प्रति क्विंटल। सुरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की बात करें तो कणक का भाव रहा 2410 में लेगे 2500 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5346 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 6300 में लेगे 7073 रुपया प्रति क्विंटल। और ग्वार का भाव रहा 5491 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, आज को टाइम इतो ही, इंग सा गई वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा, राम राम।

आवाजें हैं लता मंगेशकर, मनाडे और साथियों की।

अभी ग्रामीण परिवार सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हुए हैं। डीजे सुने कार्यक्रम फिल्मी भक्ति गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म राजा और रंक के इस गीत के साथ।

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्मी भक्ति गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी भक्ति गीत। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 55 में आयोजित शिलान्यास लोकार्पण उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राजस्थान के पचपदरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से देश के पेट्रोलियम क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऊन से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहाँ पचपदरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई। मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई। पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री

0: आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना का की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने रामजल सेतु लिंग परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में बना रहे थे, तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
1: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल अभाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
3: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
1: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
4: रेगिस्तान का रत्न HPCL, राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
1: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
0: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं

0: इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ, उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
2: जब राजस्थान विकास की

0: शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित शिलान्यास लोकार्पण उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म है हीरो नंबर वन। तो अब हम आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का कुमार शानू की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

शो तुम अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और विनोद राठौड़ को। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज की हमारी फिल्म है हीरो नंबर वन। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज की हमारी फिल्म थी हीरो नंबर वन। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन के।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने को होस्ट शक्ति सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
1: नमस्कार नवीन।
0: शक्ति, खेल प्रेमियों और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज उस शख्स पर थी जो इतिहास रचने जा रहा था, और उसने आज कर भी दिखाया जब 145-46 की स्पीड से आ रही उस तेज तर्रार गेंद को उसने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के जॉफ्री आर्चर को बता दिया कि ये बल्ला रुकने वाला नहीं है। वैभव सूर्यवंशी।
1: बिल्कुल नवीन, आज की पहली खबर है वैभव सूर्यवंशी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया दूसरे T20 मुकाबले में।
0: और वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होगी।

0: शक्ति क्रिकेट में ही अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर महिला क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में श्रीलंका का दौरा करेगी।
1: बिल्कुल, क्रिकेट के बाद नवीन बात करते हैं फुटबॉल की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले अब प्री क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंच गए हैं और आज कनाडा का सामना मोराको से और पराग्वे का सामना फ्रांस से होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
0: शक्ति फुटबॉल के बाद बात स्क्वैश की करेंगे, जहां बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। भारत की तन्वी खन्ना ने PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
1: जी नवीन, आपने कोर्ट की बात की तो बात होगी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट की भी, जहां आज कई मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
1: जी नवीन, और भारत ने इस समय ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव किए गए और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
0: सुनते हैं मुकेश की ये खास रिपोर्ट।
2: लगातार अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही 15 वर्षीय वंडर बॉय ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसमें सबसे खास है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना। सचिन ने नवम्बर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष 205 दिन थी। वे तब से भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने रहे हैं। लेकिन वैभव ने आज केवल 15 वर्ष और 99 दिन की आयु में ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वैभव IPL और घरेलू क्रिकेट में पहले ही सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। IPL के हालिया सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वैभव IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने केवल 35 गेंद में शतक जड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, आज क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार खत्म हो गया जो हमें आयरलैंड से लगातार क्रिकेट प्रेमियों की एक जिज्ञासा थी कि कब सूर्यवंशी मैदान में उतरेंगे, कब कोर्ट में उतरेंगे और कब पहला छक्का उनके बल्ले से हमें दिखाई देगा, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया।
1: जी बिल्कुल, आज जब तिलक वर्मा ने उनको अपनी डेब्यू कैप सौंपी तो वो जो उनके चेहरे पे इमोशंस थे वो साफ बता रहे थे कि ये इंतजार सिर्फ हमारे जहन में नहीं था, हमारे मन में नहीं था, इंतजार शायद वैभव को था, उनके बल्ले को था। और गेंद जब जोफ्रा आर्चर की बाउंड्री पार गई है तो शायद सारे जवाब मिल गए।
0: 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, हालांकि केवल 10 बॉल ही खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसमें एक 15 साल का लड़का 146 की स्पीड से खेलता है, 10 बॉलें खेलता है, 14 रन बनाता है और छक्के से शुरुआत करता है।
1: जी बिल्कुल, और शायद दर्शक यही देखने आए थे, 2 छक्के लगे, लेकिन कह सकते हैं नवीन ये अभी ट्रेलर है और एक बहुत बड़ी फिल्म बाकी है।
0: 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए थे वैभव सूर्यवंशी।
1: और बिल्कुल, और इसके एक साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया था मात्र 13 साल की उम्र में नवीन।
0: और अगर IPL की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर IPL का इतिहास भी रचा था और सबसे तेज भारतीय शतक भी उन्होंने बनाया था।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही घाव करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि, और तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि भारत आज का मैच शायद जीतेगा और अगले मैच में वैभव और तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह सामने आएंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बात महिला क्रिकेट की करते हैं। शक्ति, क्रिकेट की दुनिया में अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर यानी डेफ महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका का दौरा करेगी और अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलेगी। ये दौरा बधिर महिला टीम का अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में पदार्पण होगा।
1: जी नवीन, 5 मैचों की इस ऐतिहासिक T20 अंतरराष्ट्रीय बधिर टीम की कप्तानी काजल धवन करेंगी, जबकि निदा जबी शेख उप कप्तान होंगी। और भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सेसवा पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेलेगी।
0: अब आपको सीधा लिए चलते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की ओर। इस विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है और इंग्लैंड अपनी धरती पर कभी नहीं आ रही। और शक्ति,

0: ये मुकाबले बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सातवीं बार चैंपियन बनने का इतिहास रचने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड अपनी जमीन पर अजय रहने की भी कोशिश करेगा।
1: बिल्कुल, 2009 से लेकर 2026 टी20 विश्व कप फाइनल इंग्लैंड आज तक अपनी जमीन पर कोई मुकाबला नहीं हारा है और ऐसा ही रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगा। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमी पर 11 मुकाबले खेले हैं और सभी 11 के 11 में उसको जीत मिली है। तो यानी एक तरफ फाइनल में 8 बार अपना फाइनल खेलने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होगी 5वां फाइनल खेलने वाली ये इंग्लिश टीम। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यही कहानी इंग्लैंड की भी रही है। नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी में मेजबान टीम अजय रहते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। हालांकि कल इन दोनों में से किसी एक टीम के विजय रथ पर विराम लगना तय है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। वहीं 20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 2 मुकाबले टाई रहे हैं जबकि 1 मैच का नतीजा नहीं निकल सका है। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबले में भी कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधा फुटबॉल के उस महाकुंभ की तरफ चलते हैं, जहां पे राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रखे हैं। लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये फीफा महाकुंभ यानी विश्व कप अपना पहुंच रहा है। हालांकि कल अर्जेंटीना और काबो वर्डे ने कड़ी टक्कर हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच 3-2 से अपने नाम कर जीत का सिलसिला उसने बरकरार रखा है।
1: नवीन, मिस्र ने भी इतिहास रचा है और अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जहां मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार डिफेंस और अटैकिंग का एक कॉम्बिनेशन दिखाया और प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। सुनते हैं कल खेले गए मैचों का हाल।
3: फीफा विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 की रेस के सभी स्लॉट फिक्स हो गए हैं। राउंड ऑफ 32 के अंतिम मुकाबले में कोलंबिया ने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हरा दिया और मैच के 14वें मिनट में ही जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और कोई गोल नहीं होने दिया। एक अन्य मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काबो वर्डे के खिलाफ एक उलटफेर से बाल बाल बच गया। म्यामा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में बनाई। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इसके बाद काबो वर्डे के डेराय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कारबेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर किया। इसके बाद अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया। मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। इससे पहले कल मिस्र ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमों की तरफ से 1-1 गोल किया गया। शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रयास विफल किए, जबकि मिस्र ने 4 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए पहली बार अंतिम 16 का टिकट पक्का किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन कल एक बहुत बड़ा उलटफेर होते होते बच गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही अर्जेंटीना जीत गया हो, लेकिन दिल जीता काबो वर्डे ने।
1: जी बिल्कुल, और एक वो गलती जो हुई मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस से, जब अपने ही गोल्फ कोस्ट में उनकी गेंद चली गई लियोनेल मेसी का एक गोल बचाते बचाते। लेकिन जो अभियान शुरुआत से पहला मैच स्पेन के साथ ड्रॉ खेलना हो या उसके बाद जिस तरह से टीम खेली, शायद कोई फुटबॉल प्रेमी नहीं कहेगा नवीन कि ये टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही है।
0: शक्ति, ये इतिहास रहा है फीफा विश्व कप का कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक छोटी टीम ऐसे बाहर निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है, और शायद ये कल जो मैच हुआ था वो सबको चौंका देने वाला मैच होता कि मेसी के रहते अर्जेंटीना हार जाती। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा मैच खेला गया और मैच अंतिम समय तक गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें आपको मैच खेलना पड़ा। अगर यही परफॉर्मेंस अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को वापस एक बार अपने परफॉर्मेंस की तरफ देखना होगा और मोर्चों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो इस टूर्नामेंट से निकल के आई, इस मैच से निकल के आई, कि इस पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है काबो वर्दे।
0: जी, फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात से शुरू हो रखे हैं और आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला

0: ह्यूटन स्टेडियम में होगा कनाडा और मोरक्को के बीच, और दूसरा होगा फ्रांस की टीम का, और फ्रांस जो है इस बार खेलेगी पराग्वे से।
1: जी बिल्कुल, और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होती है एम्बापे की। किलियान एम्बापे सबसे आगे हैं गोल्डन बूट की रेस में, और टीम को सबसे अधिक उम्मीदें टीम के स्टार खिलाड़ी से होने वाली हैं।
0: जी शक्ति, पैराग्वे और फ्रांस के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, और इसमें फ्रांस का जो पलड़ा है वो लगातार भारी रहा है। फ्रांस ने 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रखे हैं, और फ्रांस को पैराग्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। अगर आपको ये जीत देखनी है, ये मैच देखना है, तो आज इंतजार करना होगा।
1: जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले एक और बहुत शानदार मुकाबला होना है जो कि कनाडा और मोराको के बीच खेला जाना है। दोनों टीम के अगर आपस के स्कोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले गए हैं और मोराको का दबदबा थोड़ा सा भारी है, 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ किया है। नवीन,
0: भी फीफा विश्व कप के इतिहास में दोनों की ये दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया था। अगर आप इन दोनों मैचों को देखना चाहते हैं तो सुबह 2:30 यानी 2:30 बजे पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे, और आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम उस ग्रास कोर्ट पे जिसका इंतजार टेनिस प्रेमियों को शुरू से ही रहता है। जून का महीना हो, जुलाई का महीने की शुरुआत हो, जून का आखिर हो, तो सब रुक करते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, जहां पुरुष सिंगल्स में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के मार्कस गिरा से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडी मिनार ने अमेरिका के जेट्री स्वाजदा को 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से हरा दिया।
1: जी, और महिला सिंगल्स की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक का मुकाबला फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा इला से जारी है, और एक अन्य मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रॉय बकीना ने बेल्जियम की एलिस मार्टिस से उनको हार का सामना करना पड़ा 7-6, 6-1 से।
0: शक्ति, कल इस टूर्नामेंट में एक शानदार मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरकनेक को 3 घंटे चले मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 से हरा दिया।
2: On the grass of center court, but it's Djokovic first to rise. 6-4, 1-6, 7-6. What a point to finish a great match, a great test for Djokovic, a scare from Arthur Rinderknecht. But it is Novak Djokovic who survives and will celebrate again. And take the acclaim of the crowd one more time.
1: और इस जीत के साथ ही जोकोविच विंबलडन के पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक जीत के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के बराबरी पर आ गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मार्टिना नवारितोवा हैं जिनके नाम पर 120 जीत दर्ज हैं।
0: और अब बात स्क्वैश की। स्क्वैश में तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया, और मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते अब तक का स्कोर सुन लेते हैं शक्ति से।
1: जी बिल्कुल, और 19 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है। भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा चुकी है।
0: तो आज के इस अंक में लिस्टनर्स बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए मुझे नवीन और मेरे साथ शक्ति को। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां

0: उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ।

0: आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra. Several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार थे सोनू निगम। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा।

0: सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है।

0: कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
1: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
2: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
1: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
2: विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग नहीं होगे। यहां की वायु, यहां के मेघ और यहां के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहाँ उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
2: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
1: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों,

0: कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप

0: बात करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें, तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूँ तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक

0: शक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी। और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी, सुरसर स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था, उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जिसे बहुत अधिक प्रभावित।

0: उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसे तु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका हमारे दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल
5: सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया।

0: इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto,